ही करनी चाहिए, पुरुष की तरह ही काम करना है, पुरुष वाली जिम्मेवारियां चुकनिया ने, तो होया कि घर उजड़ गए। सियाने ते कह रहे ने पृथ्वी ते बस हुण मकान ही मकान दिखाई देंदे ने, घर ते दिखाई नहीं देंदा। घर ते ओ जो वसदा है रसदा है, तो घर वसदा है स्त्री करके, ते जद घर हो स्त्री ही निकल जाए पुरुष दी तरह, तो घर घर ना रहा, वो ते सिर्फ मकान रह गए, इट्टां दी ढेरी रह गए। संतान ये बुढ़ेपे दा सहारा है, असली दौलत है। जिस दिन दी स्त्री बाहर निकल गई, संतान भी टूट भज गई, बच्चियां च भी कोमलता ना पैदा हो सकी, मां दा प्यार नहीं मिलिया, मां दी गोद नहीं मिली, ममता हिरदे विच उना दे प्रवेश नहीं की थी। तो होया कि जिथे मां बाप ममता तो सखणे होए, उथे औलाद भी सखणी होई, धन ही धन रह गया जो जड़ है, और इस तरह स्त्री ते पुरुष दी मत भी जड़ होके रह गई। जितना सहारा ममता दा मारिया होया एक बच्चा मां बाप दे लई बन सकदा सी, धन उतना नहीं बन सकदा। लेकिन मनुख ने स्त्री ते पुरुष ने जितनी धन दी चिंता की थी, औलाद दी उतनी चिंता ना की थी। आन वाला भविष्य ते बच्चियां दे हाथ ही सी, तो मनुख दा भविष्य बिगड़दा जा रहा है, बिगड़दा जा रहा है, क्योंकि बच्चे ममता तो हीण होंदे जा रहे ने, प्यार तो हीण होंदे जा रहे ने, अहंकार घृणा नफरत सारी दुनिया विच इस नवी पनीरी दे अंदर वध रही है, जिसका कारण है स्त्री दा पुरुष दे तल ते बैरूनी रूप विच बराबरी करना, और पुरुष दा इस बराबरी नो किसे हद तक कबूल करना और किसे हद तक विरोध करना। लेकिन इस नाल घर घर नहीं रहे, बस घर मकान बन के जो है रह गए ने। स्त्री दी अपनी महानता सी, और किधरे ये अपनी महानता नु समझ लवे, तो घर मंदिर बन सकता है, घर हरि मंदिर बन सकता है। नहीं ते उजड़िया होया खोला, उजड़िया होया एक खंडर, इस तो बिना होर जो है कुछ भी नहीं होवेगा। धन गुरु नानक देव जी महाराज ने स्त्री दा पक्ष पूरदे होया के है, जे कुछ महान मनुखां करके संसार दा इतिहास रौनकीला बनिया होया है, वाकई इना कुछ महान हस्तियां नू इतिहास दिचों कढ देईए, सारा संसार बेरौनक हो जांदा है, पर इना हस्तियां नू जन्म देने वाली मां ही ना आउंदी, ऐसी धरती ही ना आउंदी, तो ये फुल किथे खिड़ने सन, और संसार पुर रौनक किथे जो है बनना सी। धन गुरु नानक देव जी महाराज ने इस वास्ते स्त्री नू बराबरी दिती। दैवी गुणा विच भी कुछ गुण पुरुष ने, कुछ गुण स्त्री ने। ज्ञान पुरुष है, भक्ति स्त्री है, दया स्त्री है, पर इसके मुकाबले थे संतोख पुरुष है। इसी तरीके नाल सूरवीरता ये पुरुष है, लेकिन सहनशीलता स्त्री है। गिणदे जाइए शांति स्त्री है, क्रांति पुरुष जो है मन लीए, पर क्रांति शांति ते आधारित होवे, सूरवीरता सहनशीलता ते आधारित होवे, और संतोख दया दे आसे ते टिके होवे, ताई खूबी है और मानसिक तल ते आनंद है। जे मानसिक तल ते इस तरह दैवी गुणा दी लोड़ है जो स्त्री ते पुरुष ने, तो बाहर भी सुख अमन ते चैन बनिया रहे इन्हां दोहां दी।

0: लोड़ है, और जितना महान पुरुष है उतनी महान स्त्री है। धन गुरु नानक देव जी महाराज ने गुरुद्वारियां दे दरवाजे दोहां लई खोल दिते। सत्संग दा आनंद दोवें माण सकदे ने, अमृत दोवें पान कर सकदे ने, और इस तल ते धार्मिक दोहां दी बराबरी और पदार्थ दे तल ते दोहां दी बराबरी किसे भी तल ते इस नूं पछाड़ के जो है नहीं सुटिया गया, अगाह बकायदा नाल रखिया गया और हर तल ते इस दे गुणा नूं सलाहिया गया, सन्मानिया गया। कहिंदे ने जद कोई पुरुष बंदगी करदिया करदिया पूर्ण पुरख बनता है तो उस दे अंदर इस्त्री दी दया ते कोमलता प्रगट हो जांदी है, उस दे बोलां विच भी इस्त्री भाव आ जांदा है। जैसी कबीर ते गुरु नानक दे बड़े बोल इस्त्री भाव दे ने, मोरी रुण झुण लाया भैणे सावन आया, तेरे मुंद कटारे जेवड़ा तिन लोभी लोभ लुभाया। ए बोल गुरु नानक दे। भगत कबीर कहंदे ने कियो सिंगार मिलन के ताए, हर न मिले जग जीवन गुसाई, हर मेरो पिर हों हर की बहुरिया, राम बड़े मैं तनक लहोरिया। पूर्ण हो जाती है स्त्री जद उसके अंदर ज्ञान पैदा हो जाए, पूर्ण हो जाता है पुरुष जद उसके अंदर भक्ति पैदा हो जाए, भावना पैदा हो जाए। पूर्ण हो जाती है स्त्री जद उसके अंदर भी अपनी सुरक्षा लई सूरबीरता पैदा हो जाए, और पूर्ण हो जाता है पुरुष जद उसके अंदर सहनशीलता जो है पैदा हो जाए। दोहां दी मंजिल एक है, दोहां दा मार्ग एक है, इस वास्ते दोवें हमराई ने, अगे पिछे नहीं ने, बराबर जो है चलन वाले ने, बराबर हकूक रखण वाले ने। पुरख में नार, नार में पुरखा, बुझो ब्रह्म ज्ञानी। धन गुरु नानक देव जी महाराज दे ए बोल, पुरुष दे अंदर नारी है और नारी दे अंदर पुरुष है। कायनात ते निगाह मारिए ते सारी कायनात ए कुदरत नर ते मदीन विच वंडी हुई है। पशुआं नूं लईए, पक्षियां नूं लईए, बनस्पति तक नर और मदीन देच वंडी पई है। मनुखी दुनिया इतिहास तौर ते सूक्ष्म जगत नु देखिए, अस्तूल जगत नु देखिए, कुछ नर है कुछ मदीन है। मिडिल ईस्ट ते जिहड़े धर्म पैदा होए, इस्लाम ईसाइयत यहूदी पारसी, ऐसा मनदे ने कि पुरुष दी पसली नू तराश के औरत दा जहूर आलम होया, स्त्री दा जन्म होया। कुछ भी होवे, चाहे स्त्री दे सीने तो पुरुष पैदा होया, चाहे पुरुष दे सीने तो स्त्री पैदा हुई है, लेकिन इतनी गल ते आद रूप देच कबूल करनी पएगी कि दोहां दा वजूद एक है, एक देच ए दो ने और दोहां देच ए एक है। धन गुरु नानक देव जी महाराज ने इस गुत्थी नो बहुत सोने ढंग नाल सुलझाया है। पुरख में नार, नार में पुरखा, बूझो ब्रह्म ज्ञानी। ए ब्रह्म ज्ञानियो, एक गल नू समझो, जानो, पुरुष दे अंदर ही नारी है, नारी दे अंदर पुरुष, दोहां दा वजूद दोहां करके है, इस वास्ते एक दे अंदर ये दोवें मौजूद ने। स्त्री दे अंदर पुरुष मौजूद है, अस्थूल रूप दे च भी, सूक्ष्म रूप दे च भी, और पुरुष दे अंदर स्त्री मौजूद है, अस्थूल रूप देच भी, सूक्ष्म रूप देच भी। तन दे च भी और मन दे च भी। पुरुष इस वास्ते पुरुष हो सके कि 60% पुरुष है, 40% इस देश मादा है, नारी है। नारी इस वास्ते नारी हो सकी है कि 60% स्त्री है पर 40% इस देश पुरुष है। साडे देश ने नारी नूं अर्ध अंग आख्या है। यह गल वखरी है कि कहण दा लब्बो लै जा अर्थ समय दे नाल बदले। नारी पुरुष दा अर्ध अंग है, भाव पुरुष इस दे अंदर अधूरा है। अगर ऐसा है तो पुरुष नारी दा अर्ध अंग है, भाव इस दे अंदर नारी अधूरी है। कुदरत अधूरा कुछ भी रहना रहन देना नहीं चाहती, संपूर्ण करके ही कुदरत सुख मान दी है। परमात्मा दा नाम है पूर्ण। कायनात विच सब कुछ पूर्णता दी तलाश दे च है और पूर्ण होना चाहता है। जिंदगी दा लक्ष्य पूर्ण होना है। तो अधूरी नारी जो पुरुष दे अंदर है संपूर्ण होना चाहती है, और अधूरा पुरुष जो नारी दे अंदर है संपूर्ण होना चाहता है। यही कारण है मनोविज्ञानिक भी इस नाल सहमत ने कि पुरुष दे अंदर नारी दी कशिश है और नारी दे अंदर पुरुष दी कशिश है। ये विपरीत तो प्रभावित ने, हम जिन्स तो प्रभावित नहीं। उसका मूल कारण पुरुष अपने तल ते पूरा पुरुष है, उस दे अंदर अधूरी नारी है। नारी अपने तल ते पूर्ण नारी है पर पुरुष दे तल ते अधूरी है। मां बाप तो ये शरीर आया, दोहां दी अंश शरीर दे मौजूद है। अस्थूल रूप नूं संपूर्ण करन दा जो ढंग मनुखी दुनिया ने अपनाया उसका नाम आनंद कारज, विवाह, निकाह आदिक प्रचलित होए। मैरिज दा जन्म होया, निकाह दा जन्म होया, आनंद कारज विवाह प्रथा जो है चली। एति सी सूक्ष्म शरीर दी पूर्ति, एति सी अस्थूल जगत दी पूर्ति। अस्थूल शरीर नो अस्थूल शरीर दा मिलन हो गया। पुरुष नो नारी मिल गई, नारी नो पुरुष, और पशुओं दी दुनिया च, पक्षियों दी दुनिया च, कीड़े मकोड़ियां दी दुनिया च वो अपने ढंग नाल इस जरूरत नो पूरा करते ने। लेकिन सूक्ष्म तल भी है, नारी दा हिरदा भी है, पुरुष दा हिरदा भी है। स्वाभाविक तल ते देखिए कशिश विपरीत दी है। देवी गुणा नु लईए ए भी नर ते मदीन दे च वंडे पैण है। जे भक्ति नारी है तो ज्ञान पुरुष है। गुरबाणी ने ज्ञान नु पुरुष आख्या है, भक्ति नु नारी आख्या है। निज भक्ति सीलवंती नार, रूप अनूप पूरी आचार, जिचर वसी पिता के साथ, तिचर कंद फो फिरे उदास, कर सेवा सतपुरख मनाया, गुर आणी घर में ता सर्व सुख पाया। तो भक्ति नो नारी आख्या है। ज्ञान राव जब सेजे आवे तो नानक भोग करे, ज्ञान नो राव आख्या है, पुरुष आख्या है। अगर गौर नाल देखिए तो तर्क प्रधान है पुरुष दे अंदर, भाव प्रधान है, भावना प्रधान है, श्रद्धा प्रधान है स्त्री दे अंदर। मन दा टिकाओ भाव नाल होंदा है, मन नूं सूझबूझ ज्ञान नाल मिलदी है, तर्क नाल मिलदी है। तर्क स्त्री दे अंदर अधूरी है, पुरुष अधूरा है। भावना पुरुष दे अंदर अधूरी है, स्त्री अधूरी है। अस्थूल जगत ते जद ए अधूरे ने नारी दे अंदर पुरुष, पुरुष दे अंदर नारी, तो सूक्ष्म दुनिया भी अधूरी है। या इंज कह लो, ज्ञान तो हीणा हिरदा है नारी दा, भक्ति तो हीणा हिरदा है पुरुष दा। पुरुष दे अंदर अगर भावना है, भक्ति है, तो अधूरी। स्त्री दे अंदर अगर ज्ञान है, तर्क है, तो अधूरा। जिथे अस्थूल जगत संपूर्ण होने लई तड़पदा है, उत्थे सूक्ष्म दुनिया भी अपने तल ते बहबल आउंदी है। कल्ली स्त्री, इकल्ला पुरुष संसार नहीं चला सकेगा। परिवार दा चलना ही संसार दा चलना है। अगर स्त्री पुरुष नो अलग कर देइए, परिवार अलग हो गया, एक दिन संसार अलग हो जाएगा। इस वास्ते स्त्री दे या पुरुष दे त्याग दे उते जिहड़े धर्म खड़े सन, वो कोई पायदार नहीं सन, ज्यादा चल भी नहीं सके और उना नाल ज्यादा जुड़ भी नहीं सके। वो समूह दा धर्म नहीं सी, सारिया दा धर्म नहीं सी, वो कुछ लोगों दा हो सकता है। जैसे महात्मा बुद्ध ते स्वामी महावीर त्याग ते खड़े ने, इस सारिया दा धर्म नहीं हो सकता। सारे ही त्याग कर दे ने स्त्री दा, और स्त्री त्याग कर दे पुरुष दा, तो परिवार खत्म हो। तो जब परिवार खत्म होया है, तो संसार कितने दिन तक चलेगा, इस समाज कितने दिन तक चलेगा, आखिर ये वक्ती खेट सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो प्रकृति संसार नो चलाए मान रखना चाहती है। ये ताई चल सकेगा परिवार चलन, परिवार चल रहा है तो संसार चलेगा, और परिवार चल रहा है स्त्री ते पुरुष नाल। पति पत्नी दे सुमेल तो नानके दादके सौरे जन्म लेंदे ने। रिश्तियां दी ये तीन प्रणालियां दा केंद्र, पति ते पत्नी ने, ये रिश्ता टूट जाए ना नानके ना दादके ना सौरे, तो ये परिवारिक जीवन संसारिक जीवन स्त्री ते पुरुष दे सुमेल तो चलता है। स्त्री दे अंदर जो स्थूल तल ते अधूरा पुरुष है, विवाह दे नाल उसकी संपूर्णता हो जाती है। और पुरुष दे अंदर जो अधूरी स्त्री अस्थूल तल ते, निकाह विवाह आनंद कारज इसनु संपूर्ण कर देंदा है, लेकिन सूक्ष्म दुनिया अधूरी रहती है। भावना ते है, श्रद्धा ते है स्त्री दे अंदर, लेकिन तर्क नहीं है, ज्ञान नहीं है। तो ज्ञान तो बिना ते भावना अंधी होंदी है, ज्ञान तो बिना ते श्रद्धा अंधी होंदी है, और श्रद्धा तो बिना ज्ञान लंगड़ा होंदा है। इंज कह लो, पुरुष दा ज्ञान परमात्मा तक पहुंचण दे असमर्थ है, क्योंकि भाव नहीं है, श्रद्धा नहीं है, लंगड़ा है। और स्त्री दी भावना भटकेगी, श्रद्धा भटकेगी, क्यों? ज्ञानहीणी है, तर्कहीणी है। असी देखते हैं बहुता पखंड अगर पूजिया जा रहा है तो स्त्री जगत विच, अगर सच भी ठुकराया जा रहा है तो पुरुष जगत विच, क्योंकि तर्क है, भाव नहीं है। और स्त्री कोल भाव है, तर्क नहीं है। एक गाथा है कि एक कस्बे नू पिंड नू अग लगी, सारे ते अपनी जान बचा के कस्बे चो निकल गए, लेकिन आमने सामने दो रहण वाले ना निकल सके। एक दे कोल पैर नहीं सन, एक दे कोल अखा नहीं सन, एक अंधा सी, एक पिंगला सी। इस तरह ये दोवें विचारे अग दे चो निकलण दे च असमर्थ रह गए। अंधा टंटोल टटोल के बुए तक पहुंचे है, और यही हाल पिंगले दा सी, बुए ते बैठे है। पर इस पिंगले ने अखा नाल वेखे है अंधे नूं और आवाज मार के आखे है मित्रा मैं तेरे पैरां दा इस्तेमाल कर लेना तू मेरी अखां दी वरतों कर ले आपां इस अग तो निकल सकते हैं। कहानी है अंधे दी पिट ते ये पिंगला बैठ गया है रस्ता दस्ता गया और रस्ते ते अंधा चलदा गया इस तरह दोवें अग दे चों निकलन दे सफल होए। हकीकत है संसार दी अगन दुखां दे चों निकलन दे स्त्री पुरुष दा सही सुमेल अंधे ते लंगड़े दा मेल है और दोवें निकल सकदे ने। अंधे नूं पैर मिल जाणगे और लंगड़े नूं पैर मिल जाणगे अंधे नूं अखां मिल जाणगियां। हकीकत है ये सच्चाई है पैरां दी सारी गति किसे हद तक दोहां दे सुमेल तो होवेगी और सारा देखना दोहां दे सुमेल तो होवेगा रुक जाएगा परिवार तो संसार रुक जाएगा ये दोवें रुक गए तो जगत रुक जाएगा धार्मिक दुनिया रुक जाएगी अगर भावना ना रही ज्ञान ना रहा परिवार टूट जाएगा अगर स्त्री ना रही पुरुष ना रहा। जिथे स्वभावक एक गुण है स्त्री दे अंदर भावना प्रधान है श्रद्धा प्रधान है भावना मन नूं टिकाण दे च बड़ी समर्थ है प्रबल है यही कारण है कि घर दी चार दीवारी दे च सारी जिंदगी स्त्री बड़ी खुशी नाल कट लेंदी है क्योंकि टिकाओ है भावना मन नूं टिका के रखदी है श्रद्धा मन नूं टिका के रखदी है और एक पुरुष एक दिन भी पूरा घर विच नहीं बैठ सकेगा तर्क उदे पैरां नूं गति देंदा है भटकांदा है चल। इस वास्ते कहिंदे ने अगर तर्क ना होवे तो बाहर दी दुनिया खत्म होवेगी अगर भाव ना होवे तो घर दी दुनिया खत्म होवेगी। इस वास्ते स्त्री दे अंदर परिपूर्ण परमात्मा ने भावना प्रधान रखी है श्रद्धा प्रवान प्रधान रखी है ये अपने कोल बड़ा भावक हिरदा रख दी है पर पुरुष अपने कोल बड़ी तर्कशील बुद्ध रखता है। प्रबल भावना करके घर वसया रहिंदा है और प्रबल तर्क करके बाहर दी दुनिया फैल दी जांदी है वद्दी जांदी है। लेकिन कुछ स्वभावक औगुण भी है स्त्री दे अंदर पुरुष दे अंदर स्त्री दे अंदर स्वभावक जो औगुण है बड़ी प्रबल ईर्ष्या है स्त्री दी स्त्री नाल बहुत प्रबल ईर्ष्या है और इस ईर्ष्या करके ईर्ष्या करके जेलसी करके कई दफा घर नरक बनता है देखण दिया है बहुते घर मर्दां करके नहीं टूटदे स्त्री दी ईर्ष्या करके जो है टूट जांदे ने स्त्री दा स्त्री नूं बर्दाश्त करना बड़ा कठिन हो जांदा है बहुत कठिन हो जांदा है। सस ते नूं देराणी ते जठाणी परजाई ते निनाहण मुश्किल है एक दूसरे नूं सहन करन बर्दाश्त करन यूरोप दी दुनिया ते सारे परिवार टुट गए ने और एशिया दे च बहुते परिवार कल कलेश दे दल दल दे च फसे हुए ने स्त्री दी ईर्ष्या करके। पर पुरुष दा तर्क फैलाओ इस दे अंदर बड़े प्रबल अहंकार नु जन्म देंदा है तो पुरुष दा जो बुनियादी अवगुण है अहंकारी है बहुत अहंकारी है। प्रबल अहंकार करके इसका भी घर विच कलेश मचाना स्वभाविक हो जाता है। अहंकार की जेल सी। इस दा टकराव किसे वक्त स्त्री ते पुरुष दा टकराव हो जांदा है और दूरियां नू जो है जन्म देंदा है। लेकिन फिर भी अगर दोवें सत्संगी होवन, सतपुरुषां तो प्रेरणा लैण वाले होवन, तो फिर दोहें अपने गुणां दी सही वरतों करके परिवार नू स्वर्ग बना सकदे ने, संसार नू स्वर्ग बना सकदे ने। प्राचीन जमाने तो लैके हुण तक धार्मिक जगत देच शायद कुछ इना ही कमजोरियां करके स्त्री निंदनी रही है और नरक दी द्वारी कहंदे रहे ने साडे देश ते आदर्श इते नरक द्वारी है। इस वास्ते सनातन मत देश ते किसे हद तक इस नु शूद्र मनिया गया है कि जनेऊ पहनण दा अधिकार नहीं रखती, इनू वेद पाठ करण दा अधिकार भी नहीं दिता और इसनु ऐसा मन लिया है कि बुद्धहीन है, शूद्र है। हैरानगी दी गल है महाकवि तुलसी भी इसनु पशुआं दी श्रेणी दे खड़ा करदे ने, ढोर गवार शूदर पशु नारी ए पांचों ताड़न हितकारी। जैसे शूदर नु पशु नु ताड़दे रहिए तां ठीक रहिंदे ने, इस तरह शूदर नु ते पशु नु जिवें ताड़दे आ उसे तरह स्त्री नु ताड़दे रहिए तां ओह ठीक रहिंदी है। पशुआं दी दुनिया विच खड़ा कीता इस महान चिंतक ने, इस महान कवि ने, साडे देश दे प्राचीन ऋषियां ने, मुनियां ने, ए घोर नरक दी दुआरी है। भाई साहब भाई गुरदास जी गुरु घर दे वेद व्यास फरमान करदे ने, लोक रीत गुण ज्ञान विच अर्ध शरीरी मोख द्वारी, इते मोक्ष द्वारी है, इस तो बिना मुक्ति किते। हैरानगी मोक्ष द्वारी किथे नरक द्वारी किधरे मोक्ष द्वारी। जिन्हां ने नरक द्वारी आख्या उन्हां कोल सब तो वड्डा तर्क ए सी कि स्त्री नू असी किधरे भी अवतारी दुनिया विच नहीं देखते। अज तक जितने अवतार आए करीबन करीबन वो पुरुष तन धारण करके आए। जे अपने देश दे प्राचीन सिरमोहर अवतारी पुरुषां नू देखिए, विष्णु ने, श्री राम ने, श्री कृष्ण ने, धन गुरु नानक देव जी महाराज ने, बड़े बड़े भक्त ने, ऋषि ने, मुनि ने, पुरुष रूप देच ने। स्त्रियां देच कोई बहुत वड्डी ग्रंथकार भी देखण नू नहीं मिली। साहित्य तरह तरह दी कला दे जन्म दाते भी पुरुष, संगतराश, चित्रकार, कवि, दार्शनिक, फिलोसफर, चोटी दे साइंटिस्ट, चोटी दे राजनेता, हर दुनिया विच हर पासे असी पुरुष नू अग्रसर देखदे आं, अग्गे देखदे आं। तो पुराने लोगां कोल ए तर्क सी कहण वास्ते कि पशु दा मतलब है पछड़िया होया, तो चूंकि स्त्री भी पछड़ी हुई है, पशु दा मतलब है पछड़े होया, पुरुष तो पछड़ी हुई है, पुरुष दे पीछे है। इस वास्ते आदि काल तो ऐसा भी रहा कि स्त्री पुरुष दे पीछे ही चले, क्योंकि ये पछड़ी हुई है, हर तल ते पछड़ी हुई है, हर पक्ष ते पछड़ी हुई है, पीछे जो है चले। ऐसा भी जमाना लंघे है, दौर लंघे है, जिथे स्त्री केवल धन सी, घरेलू साजो समान दी तरह, वस्तुआं दी तरह स्त्री भी एक वस्तु सी, जैसे कोई धनवान गिणिया जांदा सी, इस दे कोल हाथी ज्यादा ने, घोड़े ज्यादा ने, मकान ज्यादा ने, जमीन ज्यादा है, सोना चांदी ज्यादा है, तो धनवाना दी गिणती दे च ओ भी आउंदा सी, ਇਸਦੇ ਕੋਲ ਇਸਤਰੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ 400 ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ 600 ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੇ। ਦੂਰ ਸਤਯੁਗ ਤ੍ਰੇਤੇ ਦੀ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀ ਕਰਨੀ। ਇਸ ਦੌਰ ਵਿਚ ਵੀ ਐਸੇ ਨਵਾਬ ਮਹਾਰਾਜੇ ਹੋਏ ਨੇ, 400-400 ਰਾਣੀਆਂ ਔਰ 600-600 ਬੇਗਮਾਂ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਮੌਜੂਦ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮ ਜੋ ਹੈ ਚਰਚਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਧਨ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਐਸਾ ਦੌਰ ਵੀ ਲੰਘਿਆ ਚੀਨ ਵਿਚ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਜੁਰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜੈਸੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਸੁੱਟ ਦੇਵੇ, ਜੈਸੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਅੱਗ ਲਾਵੇ, ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਧਨ ਸੰਪਦਾ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਧਨ ਸੀ ਆਪ ਫੂਕਿਆ, ਕੋਈ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ। ਇਸਤਰੀ ਇੱਕ ਧਨ ਸੀ, ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ। ਐਸਾ ਦੌਰ ਵੀ ਲੰਘਿਆ, ਔਰ ਐਸੀ ਵੀ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਤਮਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚੇਤਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗਰਸ ਕੇ ਆਦਿ ਕਾਲ ਤੋਂ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂ ਕਹਿਣ ਦਾ, ਪਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਕਹਿਣ ਦਾ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਤਰਕ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗ੍ਰੰਥਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੇ, ਅਵਤਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ, ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਚੋਟੀ ਦੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕਵਿਤਰੀ। ਸੰਗਤ ਰਾਸ਼ੀ ਸੰਗੀਤ ਕਲਾ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ, ਗਿਆਨ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ, ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ, ਅਵਤਾਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਪੁਰਸ਼ ਹੀ ਪੁਰਸ਼ ਅੱਗੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਪਛੜੇ ਹੋਣ ਦਾ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਇਹ ਪਛੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਪਛੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਇਆ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ। ਆਪਨੇ ਇਸ ਤਰਕ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੁਠਲਾਇਆ, ਪਰੇ ਸੁੱਟਿਆ, ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਉਂ ਮੰਦਾ ਆਖੀਏ ਜਿਤ ਜੰਮੇ ਰਾਜਾ। ਬੜੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਪੰਕਤੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ। ਆਪ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸਤਰੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਵਤਾਰ ਬਣਦੀ, ਉਸ ਦਾ ਸਮਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਅਵਤਾਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਿਚ ਲੱਗ ਗਈ। ਉਹ ਆਪ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰੰਥਕਾਰ ਬਣਦੀ, ਉਸ ਦਾ ਸਮਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਗ੍ਰੰਥਕਾਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਿਚ ਲੱਗ ਗਈ। ਜਿਸੇ ਹਰ ਪੁਰਸ਼ ਅਵਤਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਗ੍ਰੰਥਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕਲਾਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਹਰ ਇਸਤਰੀ ਕਲਾਕਾਰ ਨੂੰ, ਅਵਤਾਰ ਨੂੰ, ਸੰਤ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਜੋ ਕਿਸੇ ਸੰਤ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਸਕੀਏ, ਵਾਕਈ ਉਸਦੀ ਕੁੱਖ ਐਸੀ ਹੀ ਸੀ, ਮਹਾਨ ਸੀ। ਜੋ ਕਿਸੇ ਅਵਤਾਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਸਕੀਏ, ਔਰ ਅਵਤਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਐਸੀ ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਕੁੱਖ ਚੁਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਤਨਾ ਅਵਤਾਰ ਪੂਜਨੀਕ ਹੈ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਉਤਨੀ ਹੀ ਪੂਜਨੀਕ ਹੈ, ਜਿਤਨਾ ਸੰਤ ਪੂਜਨੀਕ ਹੈ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਉਤਨੀ ਹੀ ਪੂਜਨੀਕ ਹੈ, ਜਿਤਨਾ ਕੋਈ ਗ੍ਰੰਥਕਾਰ, ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਜਾਂ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਪੂਜਨੀਕ ਹੈ ਉਤਨੀ ਹੀ ਉਸਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਜੋ ਹੈ ਪੂਜਨੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦਾ ਸਮਾਂ ਉਸਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਗ੍ਰੰਥਕਾਰ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਜਨਮ ਦੇਣ ਦੇ ਜੋ ਹੈ ਲੱਗ ਗਈ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਿੰਨ ਧਨ ਜਣੇ ਦੀ ਮਾਓ ਆਏ ਸਫਲ ਸੇ, ਧਨਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ ਉਹ ਮਾਂ। ਜਿਸਨੇ ਕਿਸੇ ਐਸੇ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਫਕੀਰ ਸੀ, ਜੋ ਸੰਤ ਸੀ, ਜੋ ਅਵਤਾਰ ਸੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪੂਜਣ ਯੋਗ ਹੈ ਉਹ ਮਾਂ, ਧਨਤਾ ਦੀ ਯੋਗ ਹੈ ਉਹ ਮਾਂ। ਤੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅਵਤਾਰ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਤੇ ਅਵਤਾਰ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਗ੍ਰੰਥਕਾਰ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਤੇ ਗ੍ਰੰਥਕਾਰ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਐਲਾਨੀਆਂ ਕਿਹਾ ਸੋ ਕਿਉਂ ਮੰਦਾ ਆਖੀਏ ਜਿਤ ਜੰਮੇ ਰਾਜਾਨ। ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮੰਦਰ ਇਸਤਰੀ ਲਈ ਬੰਦ ਨੇ, ਇਸਲਾਮ ਦੀਆਂ ਮਸਜਿਦਾਂ ਇਸਤਰੀ ਲਈ ਬੰਦ ਨੇ, ਵੇਦ ਪਾਠ ਇਸਤਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਜਨੇਊ ਇਸਤਰੀ ਜੋ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨ ਸਕਦੀ। ਔਰ ਜੈਨ ਧਰਮ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਇਸਤਰੀ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ, ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਚੋਲੇ ਵਿੱਚ मुक्ति नहीं हो सकती। स्त्री नो एक जन्म ते पुरुष दा लेके ही मोक्ष गति नु प्राप्त करना होवेगा। स्त्री साधना करे, जप तप करे, उसका अगला जन्म पुरुष दा होवेगा, फिर साधना करे तो साधना दी सफलता नाल उसनु मुक्ति मिलेगी। स्त्री चोले ते मुक्ति ही नहीं है। धन गुरु नानक देव जी महाराज दा फरमान, स्त्री पुरुष नालों बहुत छेती मुक्त हो सकती है, क्योंकि इस दे अंदर भावना प्रधान है और इस दी भावना प्रधान अवतारा नू, ग्रंथकारा नू, भक्ता नू जन्म देती है। ये महान है, ये पूजनीक है। सो क्यों मंदा आखिए जित जम्मे राजा।
1: उच्चारण करो जी, वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। भगत धन्ना जी का जन्म पिंड तुवान जिला टांक उस धरती ते होया है। जदो आपां जयपुर तो कोटे नू जाइए जां कोटे नू राजस्थान विच जयपुर नू जाइए ते रस्ते दे दरमियान एक शहर आउंदा है जिसनू टांक किया जांदा है। इस टांक शहर तो थोड़ा जा अंदर नू जा के पिंड तुआन है। ऐद की सबब बनिया सन्मान योग भाई साहब भाई इंद्रजीत सिंह जी खालसा और दास नू भगत धन्ना जी दे उस अस्थान ते कीर्तन औत कथा करन दा सुभाग मिल गया जिस थां ते भगत धन्ना जी ने पार ब्रह्म परमेश्वर दी भगती कीती है। भाई साहब नाथ दे नाल सन, कई बिगे जमीन अज भी भगत धन्ना जी दे नाम ते बोलदी है। भगत धन्ना जी दा ओ खूह है कि जिस खूह दे उपर उन्हां ने पार ब्रह्म परमेश्वर दी भगती और परिपूर्ण परमात्मा ने उस भगत उस महापुरख दे कारज अराज कीते सन। भाई साहब पिछले साल नाल सांसी कठे सी ते उथे भी विचारां भगत धन्ना जी बारे होईयां। मैं सिर्फ उन्हां दे जीवन संबंधी एक अर्ज करनी चाहना हां कि आम तौर ते भगत जी दा जिक्र भाई गुरदास साहब जी दी उस पौड़ी नूं आधार बना के कीता जांदा है जिस विच ठाकर दी पूजा दा जिक्र कीता गया है। इहदे विच कोई शक नहीं कि जदो इंसान परमार्थ दे मार्ग ते चलदा है ते कई वारी कितना समा ओदा कर्म कांडां दे रूप विच ही बतीत हो जांदा है। इहनूं ध्यान नाल मेरी बेनती नूं सरवण करियो। पर ओ कर्म कांड तो उदो मुक्त हो जांदा है जदो ओदे अंदर सच्चा ज्ञान ते समर्थ गुरु कोलो ओनूं गुरु दीख्या मिल जाए, शब्द दी रोशनी विच जीन लग पवे ते ओ बाहर मुखी कर्म कांडा तो सदीव काल लई मुक्त हो जांदा है। दास गुरु ग्रंथ साहिब विच भगत धन्ना जी दे तीन शब्द ने, भावें विद्वाना ने गिनती चार कीती है। ओ राग आसा विच तीन शब्द मानदे ने ते एक राग तनासरी विच उन्हां दा शब्द मन्या जांदा है। पर जदों असी गुरबाणी नूं ध्यान नाल पढ़दे हां ते राग आसा दे दो शब्दां दे बिल्कुल दरमियान, भगत धन्ना जी दे दो शब्दां दे बिल्कुल दरमियान एक शब्द है जिदा सरलेख है महला पंजवां। उहदे विच हैरानगी दी गल है कि धन गुरु अर्जुन देव जी ने नानक पद दी वरतों नहीं कीती पर उसका सरलेख महला पंजवां है। भगत धन्ना जी का वह पवित्र शब्द जिस विच आरंभता विच भगत जी का वचन है भरमत फिरत बहु जन्म बिलाने तन मन धन ही धीरे। मैं सिर्फ बाणी ते फोकस केंद्रित होके कुछ बेनतियां करनिया क्योंकि भगत धन्ना जी का अंदर आपा वह गुरु ग्रंथ साहब की पवित्र गुरबाणी विच है। जेड़ा शब्द है यह गुरु का आपा है, यह निज स्वरूप है गुरु का। भगत धन्ना जी दे तीन शब्दों विचों एक शब्द गुरु अर्जुन देव जी का, जिस शब्द विच गुरु अर्जुन देव महाराज जी ने उन्हां भगतां महापुरखां का जिक्र किया है जिन्हां नूं उस वक्त दे स्वर्ण जाति वाले उच्ची जात वाले नीवा कहिंदे सन। केवल नीवा ही नहीं कि जे वह परमात्मा की भगती समर्पितता का जिक्र करते सन तो उन्हां भगतां महापुरखां नूं उच्ची जात वाले जलील भी करते सन। देखो थोड़ा जा बाणी की रोशनी च यह दास ने पिछले सालां विच भी एक बार अर्ज की सी, पर गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी विच भगत धन्ना जी परमात्मा की भगती किवें कर लगे उन्हां दा पवित्र शब्द है गुरु ग्रंथ साहिब विच कि भगत धन्ना जी नूं करनी कमाणी वाले महापुरखां दे जीवन बारे पता लगा। सब तो पहला भगत नामदेव जी उन्हां दे पवित्र जीवन संबंधी यह समाचार मिलिया कि उच्ची जात वाले उन्हूं अद्धी कौडी दा छिंबा कहिंदे ने। गल ध्यान नाल सुनियो, कोई शब्द गुरु ग्रंथ साहिब तो बाहर निकल के नहीं। अद्धी कौडी दा छिपा कहिंदे ने, पर अज उस दा अंदर परमात्मा दे नाम च शब्द विच इन्ना कु लीन होया कि गुरु ने अद्धी कौडी दे छिंबे नूं अज लखां दा बना दिता है। उहदी अरदास मालक दे दर ते सुनी गई। दूसरा वचन कि भगत कबीर साहब जी नूं बनारस दी धरती ते स्वर्ण जाति वाले जुलाह कह के पुकारदे ने। जदों उह सच दी गल वी करदे ने, अखौती उच्ची जात वाले उहदी सच दी आवाज नूं वी दबाण दा यतन करदे, पर उस महापुरख बारे दस्या गया कि उन्हां ने अपनी किरत जरूर कीती पर तमे ते लालच दी बिरती नूं त्याग के केवल परमात्मा नूं गाया जिस नूं लोक जुलाह कहिंदे सन। तन गुरु अर्जुन देव कहिंदे ने धन्ना जी नूं दस्या गया कि उह गुणा दी खाण बन गए कबीर जी। तीसरा वचन कि भगत रविदास जी ने उन्हां दी बिरादरी दे लोक लोकां दे घरां विच्चों मरे हुए पशुआं नूं ढोंदे ने, पशुआं दा चमड़ा उतारिया जांदा है, पर सतगुरु दी बाणी विच गुरु अर्जुन देव ने कहा भाई संसार दे लोगो कि देखो कि जिहड़ा घर घर दे विच जा के मरे हुए पशुआं दा चमड़ा उतारन दा काम करदा है उहदे खिरदे विच परमात्मा दी भगती वस गई ते उहनां ने साध संगत विच्चों परमात्मा दे दीदार नूं पाया। चौथा वचन है कि वह भगत सैन जी जिन्हां नूं लोक नाई शब्द वरदे सन। मेरी बेनती ध्यान नाल सुनियो, मैं किसे जात बिरादरी नूं केंद्रित रख के नहीं, पर जो कुछ गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी विच है वह मैं जरूर सांझा करना चाहुंदा हां कि उहनां नूं लै लोक बुत्तियां करन वाला नाई कहिंदे ने, पर हजूर ने कहा देखो कि अज वह महापुरख परमात्मा की भगती करद्या करद्या श्रोमणी भगतां दे विच उहदी शमूलियत हो गई। इस बचन नूं ध्यान नाल पढ़ियो, नामदेव जी लई शब्द छिंबा वरत्या गया, कबीर साहब लई जुलाह वरत्या गया, भगत रविदास जी लई शब्द चमार वरत्या गया, सैन जी लई भगत शब्द नाई वरत्या गया, पर सच एवे कि एक हल वाण वाला जिमीदार जिदे लई शब्द गुरु अर्जुन देव जी ने जाटरो वरत्या है, एक जाट उस दे मन विच इन्हां महापुरखां दे जीवन दियां साखियां, इन्हां दी परमात्मा विच अभेदता, इन्हां दे अंदर परमात्मा दी बख्शिश नूं देख के एक हल वाण वाला जिमीदार परमात्मा दी भगती भी जुड़िया, ਉਹਨੇ ਇੰਨੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਸ ਭਗਤ ਦੇ ਹਰ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਕਿ ਗੋਬਿੰਦ ਗੋਬਿੰਦ ਗੋਬਿੰਦ ਸੰਗ ਨਾਮ ਦਿਓ ਮਨ ਲੀਣਾ ਆਡ ਦਾਮ ਕੋ ਛੀਪਰੋ ਹੋਇਓ ਲਾਖੀਣਾ। ਇਹਤੇ ਸ਼ਬਦ ਛੀਪਰੋ ਵਰਤਿਆ ਹੈ ਕਿ ਛਿੰਬਾ। ਗੋਬਿੰਦ ਗੋਬਿੰਦ ਗੋਬਿੰਦ ਸੰਗ ਨਾਮ ਦਿਓ ਮਨ ਲੀਣਾ ਆਡ ਦਾਮ ਕੋ ਛੀਪਰੋ ਹੋਇਓ ਲਾਖੀਣਾ। ਬੁਨਣਾ ਤੰਨਾ ਤਿਆਗ ਕੈ ਪ੍ਰੀਤ ਚਰਨ ਕਬੀਰਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੀਚ ਕੁਲਾ ਜੋਲਾਹਰਾ ਭਇਓ ਗੁਣੀ ਗਖੀਰਾ। ਰਵਿਦਾਸ ਢਵੰਤਾ ਢੋਰ ਨੀਤ ਤਿੰਨ ਤਿਆਗੀ ਮਾਇਆ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵਾ ਸਾਧ ਸੰਗ ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ। ਸੈਨ ਨਾਈ ਬੁਤਕਾਰੀਆ ਉਹ ਘਰ ਘਰ ਸੁਣਿਆ ਕਿਰਦਾ ਵਸਿਆ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਭਗਤਾ ਮੈਂ ਗਣਿਆ। ਇਹ ਚਾਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਦਾਸ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜਨ ਵਾਲੇ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਭਗਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਚਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਫੀਡ ਕਰ ਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਯਤਨ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਜੋ ਮੈਂ ਬੋਲਾਂਗਾ ਆਪ ਸੁਣੋਗੇ, ਜੀ ਸਦਕੇ ਸੁਣੋ, ਪਰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਬੋਲੇ ਖੁਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਸਾਂਝ ਪਾਓ ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੋਗੇ ਸੱਚ ਇਵੇਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆ ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਦਾਸ ਨੇ ਅਰਜ਼ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਮਾਗਮ ਸੀ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ ਉੱਥੇ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਅਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੀਰਤਨੀਏ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਬਾਬਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ। ਕਾਰਨ ਇੱਕੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਉਹ ਝਿੜਕਦੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾ ਪਈ। ਪਰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਹ ਪਿਤਾ ਨੇ, ਪਿਤਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਬਿਰਤੀ ਨਾਲ ਕਿ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇ, ਪਰ ਸੱਚ ਇਹ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਚ ਦੇਖਿਓ, ਜਿੱਥੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਧਨ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਧਨ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਕੁੱਲ ਨੂੰ ਧਨ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧਨ ਧਨ ਪਿਤਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਆਪਾਂ ਬਾਬਾ ਕਾਲੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਧਨ ਧਨ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੇ? ਧਨ ਧਨ ਪਿਤਾ, ਧਨ ਧਨ ਕੁੱਲ, ਧਨ ਧਨ ਸੋ ਜਨਨੀ ਜਿਨ ਗੁਰੂ ਜਣਿਆ ਮਾਹੇ। ਇਹ ਚਾਰ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਕਿ ਪਿਤਾ ਧਨ, ਕੁੱਲ ਧਨ, ਮਾਂ ਧਨ, ਤੇ ਚੌਥਾ ਸ਼ਬਦ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਧਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਪਰਮਾਨੰਦ ਦੀ ਦਰਜ ਹੈ, ਪਰ ਧੰਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਪਰਮਾਨੰਦ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਨੇ ਵਿੱਚ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤਾ? ਬਾਣੀ ਭਗਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਦੀ ਵੀ ਦਰਜ ਹੈ, ਪਰ ਚਾਰਾਂ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਲਿਆ, ਪਰਮਾਨੰਦ, ਰਾਮਾਨੰਦ, ਭਗਤ ਪੀਪਾ ਜੀ, ਭਗਤ ਬੇਣੀ ਜੀ, ਭਗਤ ਤਰਲੋਚਨ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਦਰਜ ਨੇ। ਪਰ ਚਾਰ ਭਗਤ ਕਿਉਂ ਚੁਣੇ ਗਏ? ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ, ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ, ਭਗਤ ਸੈਨ ਜੀ। ਦਰਅਸਲ ਮੇਰਾ ਮਨ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕੋ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਗਈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੀਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੇਖ ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ, ਉਹ ਭਗਤੀ ਕਰ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਅਪੇਧ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ एक हल वाण वाले ने प्रतक परमात्मा दे दीदार पा ले। रामानंद परमानंद एदा मतलब यह नहीं कि उन्हों का जीवन जा उन्हों की रचना विच कोई अंतर है, क्योंकि उन्हों संबंधी यह मनौत है कि वह स्वर्ण जाति विचों संबंधित ने, पर इन्हों भगतों ने एक क्रांति लियांदी कि जिन्हों लोग कहिंदे सन नीवी जात दे, उन्होंने सच एवे कि समाज दियां नफरत दियां ठोकरां खांदिया होया भी परिपूर्ण परमात्मा नूं अपने हिरदे विच प्रगट कर लिया है। कबीर साहब का एक सलोक है, वह कहिंदे सच एवे कि लोग मेरी जात दा नाम लैके मजाक उड़ांदे, मैं शहर विच लंघना पिंड विच लंघना ते उच्ची जात वाले लोग मेरा नाम लैके पुकारदे ने, ते देखो महापुरखां ने वचन दर्ज कीते, पर कहिंदे ने परमात्मा मैं इस जात तो कुर्बान जाना, जे ए ठोकरा ना मार दे ते मेरे अंदर तेरी भगती दा एहसास किवें पैदा होना सी। उन्हां दे अमृत बोल ने कबीर मेरी जात को सबको हसने खार, हर कोई मेरी जात हसदा है मजाक करदा है, कबीर मेरी जात को सबको हसने खार, बलखारी इस जात को जे जपियो सिर जिंगार। कहिंदे मैं कुर्बान का ए दे तो कि जिस जात विच रह के मैनू परमात्मा की भगती मिल गई। सिर्फ मेरी बेनती सी कि चार भगतां दा जीवन सुन के वह महापुरुख भगती कर लगा। असी शब्द पढ़ लैने क्योंकि मैं लड़ी जोड़ना चाहना। पहला शब्द कह के भरमत फिरत बो जन्म बिलाने तन मन धानी धीरे, ये सारे शब्द विच भगत जी ने किते ठाकुर पूजा का जिक्र नहीं किया। इस शब्द दियां अखीरलियां तुकां ने कि धन्ने धन पाया धरनी तर मिल जन संत समानिया, कि धन्ने ने धरती दे सहारे परमात्मा नूं पाया। ते देखो ना शब्द यह नहीं लिखिया कि किसे पत्थर नूं पूज के, उन्हां शब्द वरत्या कि मिल जन संत समानिया, परमात्मा की भगती करने वाले महापुरखां की संगत करके। हुण उस तो बाद जिहड़ी अगला शब्द कह महला पंजवां, गोबिंद गोबिंद गोबिंद संग नाम दियो मन लीना, आड दाम को छीपरो होयो लाखीना, बुन्ना तन्ना त्याग कै प्रीत चरण कबीरा, नीच कुला जोलारा पयो गुनी गुहीरा, रविदास तवंता ढोर नी तिन त्यागी माया, प्रगट हो वा साध संघार दर्शन पाया। ए बिद सुन कै बिद दा अर्थ सानू रुकना पेगा कि उन्हें आ बिद आ सारे तरीके सुने, इस घटनाक्रम नू सुनिया, उन्होंने तवारीख नू सुनिया, उन्होंने भगतां दे जीवन नू पढ़िया सुनिया। ए बिद सुन कै जाट रो उठ भगती लागा, ते महाराज कहिंदे मिले परताक गुसाइयां धन्ना वडभागा, ए संत जन जिन्हां दी सोबत करके उन्होंने पाया। मैं सिर्फ उन्हां दे शब्दां नू अपने निर्धारित समय विच सिद्धांतक जो पक्ष है वह अर्ज करनी चाहांगा। पहली तुक है गुरु ग्रंथ साहिब दे राग आसा विच भगत जी दी कि हे प्रभु ऐस जीव आत्मा नू भरम दिया भटक दिया पता नहीं किन्ने कु जन्म हो गए, भरमत फिरत बहु जन्म बिलाने, एक दो नहीं बहुत जन्म हो गए ने, पर अज भी इस अंदर नू समझ नहीं पई, तन मन धन नहीं धीरे। तीन शब्द ध्यान दिया, जे मैं पहली तुक सिर्फ लैनी ते दूसरे दो शब्दां दी व्याख्या करा। तन मन तन नहीं धीरे, ना ता तन ने सदीव काल धीरे दा अर्थ धीरज, धीरज दा भाव अर्थ टिकना। कहिंदे ना ता तन ने टिकना, ना बंदे दा मन टिकदा, ते ना जिहड़ा ए तन दे अमार लाई बैठा सच एवे ना तिना चीजा विचों कोई चीज भी बंदे दे नाल निभण वाली नहीं। बस इन्हां नूं असीं थोड़ा जिहा विचार लईए। तन मन तन नहीं धीरे, मैं दो दो चार चार प्रमाण सिर्फ अर्ज करांगा बाणी विचों। देखो पहली गल, भगत जी कहिंदे आ तन किहड़ा धीरे, यह किहड़ा टिका विच है। आम तौर ते असीं शब्द वरतने आ कि मौत वेले तन बिनसदा है, नहीं बेनती है, जन्म तो शुरू हुंदा है, मरण तक इहदी प्रक्रिया मुकम्मल हुंदी है। यह तो साडे जिउंदे जी अपना रूप बदली जांदा है, जो अज मेरे तन कोल है अज तो 10 साल पहला स्वरूप नहीं सी, जे रब जिंदगी देगा ते अज तो 10 साल बाद ए चेहरा इस तरह का नजर नहीं आएगा, क्योंकि तब्दीली है, ਇਹ ਟਿਕਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੇ ਐਸਤਾ ਐਸਤਾ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਇਹ ਵਰਤੀ ਹੈ ਚੇਂਜੇਬਲ ਕਹਿ, ਇਹਨੇ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣਾ ਕਹਿ। ਤਨ ਆ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹਰ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਜਿਹੜਾ 30-32 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਘੋਕ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਏ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਦੇਖ ਫਰੀਦ, ਕੇਵਲ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਕੇਵਲ ਤੇਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਦੰਦ, ਤੇਰੇ ਮੁੱਖ ਵਿੱਚੋਂ ਦੰਦ ਨਹੀਂ, ਕੇਵਲ ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕੇਸ ਦਾੜੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ, ਕੱਲੇ ਇਹ ਤੇਰੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਕਾਲੇ ਤੋਂ ਚਿੱਟਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਆਹ ਦਿਨ ਆ ਗਿਆ ਇਹਨੇ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਪੋਹ ਦਾ ਮਕੀਨਾ ਚੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਹਰ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਗੀਚੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਅੱਤ ਦੀ ਬਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖ, ਜਿਹੜੇ ਪੱਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰੇ ਕੋਮਲ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਪੱਤਿਆਂ ਦਾ ਰੰਗ ਵੀ ਪੀਲਾ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਜੇ ਪੱਤਾ ਟਿਕਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਤਨ ਦਾ ਕੀ ਭਰੋਸਾ, ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਤਨ ਵੀ ਬਨਸਪਤੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤਨ ਟਿਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਕਿ ਰੁੱਤ ਫਿਰੀ ਵਣ ਕੰਬਿਆ, ਦੇਖੋ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ। ਤਨ ਮਨ ਧਨੀ ਧੀਰੇ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਤੁਕ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਦੀ ਲਈ, ਤੇ ਸੱਚ ਏਵੇ ਜੇ ਇਕੱਲੇ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਤੁਕ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗਹਿਰਾਈ ਵੀ ਜਾਈਏ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਭਾਵੇਂ 5 ਸਾਲ ਨਿਰੰਤਰ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਆ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਤਨ ਮਨ ਤਨ ਨਹੀਂ ਧੀਰੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਰੁੱਤ ਫਿਰੀ ਵਣ ਕੰਬਿਆ, ਪੱਤ ਝੜੇ ਚੜ ਪਾਹੇ, ਚਾਰੇ ਕੁੰਡਾਂ ਢੂੰਡੀਆਂ ਰਹਿਣ ਕਿਥਾਓ ਨਾਖ। ਤਨ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖ ਪਤੀਣੀਆਂ, ਤਨ ਮਨ ਤਨ ਨਹੀਂ ਧੀਰੇ, ਅੱਖਾਂ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਤਲੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ, ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਅੱਖੀਂ ਦੇਖ ਪਤੀਣੀਆਂ, ਸੁਣ ਸੁਣ ਰੀਣੇ ਕੰਨ, ਸੁਣਦਿਆਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਕੰਨ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੋਲੇ ਹੋ ਗਏ। ਸ਼ਾਖ ਪਕੰਦੀ ਆਈਆਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਰੁੱਖ ਤੇ ਪੱਤ ਝੜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦਾ ਰੰਗ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੱਚ ਏਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ ਮਨਾ, ਦੇਖ ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਇੰਦਰੀਆਂ ਤੇ ਚਮੜੀ ਦਾ ਰੰਗ ਵੀ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਾਖ ਪਕੰਦੀ ਆਈਆ ਹੋਰ ਕਰੇਂਦੀ ਵਨ, ਇਹਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਅਪਰੋਚ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੁਗੜ ਸਿਆਣੇ ਸਰੋਤੇ ਹੋ, ਸਾਡਾ ਤਨ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬੰਦਿਆ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ, ਮਨ ਦਾ, ਤਨ ਦਾ ਤੇ ਧਨ ਦਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਤੇਰੇ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਤੇਰਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦੇਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੇਂਜ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਨੁਕਤਾ ਹੋਰ, ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਮੈਂ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਵਕਤ ਉਹਨੂੰ ਐਸਤਾ ਐਸਤਾ ਚੇਂਜ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਮੈਂ 2 ਬਚਨ ਹੋਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਤੁਕ ਮੈਂ ਅਰਜ ਕਰ ਲੱਗਾ, ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤਨ ਸਦੀਵ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਚਨ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਅਪਰੋਚ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲ ਚ ਜਿਹੜਾ ਬਚਪਨ ਹੈ ਇਹਦਾ ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਜਵਾਨੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਆਪਣਾ ਜੋਸ਼ ਦਾ ਹੜਕ ਹੈ, ਬੁਢੇਪਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਆਪਣਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਗੈਪ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਕੋਵੇ ਕਿ ਜਵਾਨੀ ਕਦੀ ਵੀ ਬੁਢੇਪੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪ ਬੁਢੇਪੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਮਾਂ ਬਾਪ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਤਜਰਬਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਨ ਨਹੀਂ ਟਿਕਿਆ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਘਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਸਵਾਸ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰੀਏ ਕਿ ਤਬਦੀਲੀ ਇੰਨੀ ਆ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਮੋਤੀਆਂ ਦੀ ਕਤਾਰ, ਮੋਤੀਆਂ ਦੀ ਲਾਈਨ, ਮੋਤੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੋਤੀਆਂ ਵਰਗੇ ਚਮਕਦੇ ਹੋਏ ਦੰਦ ਅੱਜ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੰਦਾ ਦੁਖੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਏ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਦੰਦ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਏ ਪਰ ਅਜੇ ਬੰਦਾ ਜਿਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਦੰਦ ਪਹਿਲੀ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਬੰਦਿਆ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀਏ, ਤਿਆਰੀ ਤੇਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਭੁਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, शरीर, क्योंकि तन मन तन नहीं धीरे, तेरा तन भुरन लग पिया है।

गुरु अस्थाना ते समा आया शेरे पंजाब दा। उस वेले उदासी महात्मा जेड़े सन गुरु घरां दा प्रबंध कर लगे। शेरे पंजाब ने बहुत सारियां जगीरां दौलत जमीन जेड़ी है गुरु घरां दे नाम लगाई। श्री ननकाणा साहिब इत्थे भी महंत सन, अमृतसर साहिब दी धरती ते भी पुजारी महंत ने। मुकदी गल की के गुरु घरां दा जेड़ा प्रबंध है जा संचालन है वह महंत दे हाथ विच ही, उहदी मर्जी जिओ जा मर्जी करे। अंग्रेज दा समा आया ये प्रबंध करदे रहे, पर अंग्रेज नूं पता सी कि गुरु घर जेड़े ने ये सिक्खी दा सोमा ने, ते जे किते सिख सोमे नाल टुटे रहन इहना अंदर रूहानियत आउणी नहीं। उन्हें वकारी महंतां दा साथ देना शुरू किया। ध्यान दिया जे सब तो पहली घटना जदो सिंह सभा लहर चली है 12 अक्तूबर 1920 दी। प्यारियो इथों तक हरिमंदर साहिब जदो जांदे हो ना ते दर्शनी ड्यूड़ी अंदर जांदियां खब्बे हथ एक बहुत सोहनी सुनहरी अखरां विच घटना लिखी है कि कुदरती कौतक। ओहदे विच कहिंदे ने इथों तक के हरिमंदर साहिब दे अंदर जदो पुजारी कुकरनी सन कि एक वारी अग दा गोला हरिमंदर साहिब गुरु ग्रंथ साहिब दे बिलकुल सामने आके फटिया, चार चफेरे चानण हो गया। इमारत दा कोई नुकसान नहीं, संगत विचो किसे दा नुकसान नहीं, पर कहिंदे ने एक सज्जन नूं मैं पढ़िया कहिंदे कि अंग्रेज जेड़े सन उह सरबराहां दे राहीं हरिमंदर साहिब नूं भी गहने पवाना चाहते सन कि गहना दे दिओ जिन्नी भेट आएगी तुहाडी। उस दिन जदों इह घटना वापरी खामोश हो के चले गए। पहली घटना 12 अक्तूबर 1920 दी जलियां वाले बाग वाले पासियों। इथे गुरमुखां ने सिंह सभा लहर दे कुछ मोढ़ियां ने अमृत प्रचार अमृत संचार कीता ते उह सज्जन जिन्हों अपने लोग कई वारी चौथा पौड़ा शब्द वरदे ने उहनां ने अमृत दी दात लई ते जदों कड़ा प्रसाद दी देग लै के हरिमंदर साहिब आए ते पुजारियां ने अगो इनकार कर दिता। कहन लगे तुहाडी देग हरिमंदर साहिब दे अंदर प्रवान नहीं हो सकदी। ते उहनां ने क्या भलिओ असीं तां गुरु कलगी वाले दे अमृत दी दात लईए। कहन लगे की होया अमृत लै लिया पर तुहाडी जात तां ओही है ना, अज भी अजे तक ने आ, पता नहीं ये कोढ़ दी बीमारी कदों अंदरों निकलेगी। साहिब गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी पढ़न वालिओ भगत कबीर साहिब ने एक गल डंके दी चोट ते कही सी, कहन लगे जौ तो ब्राह्मण ब्राह्मणी जाया तो आन बाज काहे नहीं आया, तुम कत ब्राह्मण हम कत सूद, हम कत लोहू तुम कत दूध। ते उथे एक गल स्पष्ट कर दिती कि जात दा अभिमान ना करी। ब्राह्मण एक जात हो सकदी है पर जिवें गुरमुखां कहा पंडित जात नहीं, पंडित जेड़ा है वह अंदर दी पदवी है जिन्हों साहब कहिंदे ने सो पंडित जो मन पर बोध है, राम नाम आत्म में सोध है, राम नाम सार रस पीवे उस पंडित कै उपदेश। साहब सच्चे पातशाह जी दे उन्हां सिखां कहा कि देख प्रवान करो नहीं मन्ने। उथे गुरमुख फिर सरदार तेजा सिंह जी पुत्र सरदार तेजा सिंह जी चूड़कणा पंथक आगू आए, उन्हां पुजारियां नूं कहा कि तुसी देख स्वीकार करो। पुजारी इनकार कर गए। उन्हां कहा देखो गुरु ग्रंथ साहिब नूं तुसी भी गुरु मानदे हो ते असी भी मानने हां, झगड़ा नहीं, गुरु ग्रंथ साहिब दे चरणां विच कर लो अरदास ते जो हुक्मनामा गुरु ग्रंथ साहिब दे देणगे ना आपां दोवें धिरां स्वीकार कर लांगे। जे गुरु नूं प्रवान होया ते देग लै लिओ, जे ना प्रवान होया ते असीं कदी तुहानूं कहांगे नहीं। उथे गुरमुखो भाई गुरबचन सिंह ग्रंथी सन, उन्हां ने अरदास कीती। भाई साहिब होरां नूं पता उस घर की मर्यादा ही आप जी दे ज्ञात लई कि भाई साहिब भाई बख्शीश सिंह जी होरी गुरु रामदास जी दे दर ते मुख ग्रंथी की सेवा भी निभाई है। जिथे गुरमुखो किसे नूं हक नहीं कि पंज सिंह साहिबान जिहड़े ग्रंथी साहिब ने उन्हां तो बिना जां चौर बरदार तो बिना कोई चौर नहीं पकड़ सकता। महाराजा पटियाला भुपिंदर सिंह गया सी चौर नूं हत्थ लाने का यत्न किया ते गुरु के ग्रंथी सिंह ने रोक दिता। कहन लगे होवेगा बादशाह सम्राट राजा अपने घर परे पातशाहां दे पातशाह दे घर विच तेनू हक नहीं चोर नूं हत्थ ला सके। उह सेवा इन्नी उच्ची सुची उस घर दी गुरु के ग्रंथी ने पुजारी ने कीती अरदास कि धन गुरु रामदास जी कि इन्हां दा अज अमृत छकना तेरे घर विच प्रवान है, जे प्रवान है ते की असी

गुण गावा दिन रात, नानक चाहो एहो। परम सम्मान योग सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर सुबाई मान खोए बैठे गुरमुख प्यारे सतसंगी जनों, आज आप जी शहीदां दे सिरताज पंचम गुरुदेव श्री गुरु अर्जन देव महाराज जी का शहादत वाला दिन मना रहे हो। आपने हजूर दे पावन पवित्र इलाही बचना दा कीर्तन सरवण कीता है। आओ सतगुरु गुरु अर्जन देव महाराज जी दे पावन पवित्र जीवन नू और हजूर दी इलाही बाणी दी विचार करिए। विचार आरंभन तो पहला आप कृपा करके समूह माई भाई एकाग्रता बख्शो, हजूर दे चरणा विच अपनी हाजरी लवाइए ते गुरु बख्शी फतेह प्रवान करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जिमें पिछले दिने अर्ज की थी कि सतगुरु गुरु अर्जन देव महाराज उन्हां दी शहादत दे कारण की सन, सतगुरु गुरु अर्जन देव महाराज जी नूं जहांगीर दी मतस्वी नीति है जेड़ा ये नहीं सी चाहुंदा कि गुरु नानक साहिब दे घर अंदर लोक इन्हां दा बादशाहां नालों वध अदब करन, नहीं सी चाहुंदा कि इन्हां कोल कोई केंद्री अस्थान होवे जिस दे अंदर दी ये बिरती सी मेरे प्रभाव अधीन आके जो इन्हां ने गुरु ग्रंथ साहिब जी दी रचना कीती है, सिरजना कीती है, उस गुरु ग्रंथ साहिब जी दे अंदर मेरी मर्जी दे मुताबिक शब्द पाए जाए। पर सतगुरु गुरु अर्जन देव महाराज जी ने असूल नाल समझौता नहीं कीता, असूल तो गिरन दी बात नहीं कीती, ते सतगुरु गुरु अर्जन देव महाराज उन्हां नूं शहीद करन दा जहांगीर ने हुक्म दे दिता है, ते लाहौर दी धरती ते मुर्तजा खाए जिस नूं ए फरमान जारी करके बादशाह ने कहे कि गुरु अर्जन देव जी दे परिवार नूं उन्हां दा घर घाट जब्त कर लिया जाए। सतगुरु गुरु अर्जन देव महाराज जी नूं कोशिश करो मनान दी, जुर्माना भर दे जां ओ गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी विच साडे मुताबक कुछ बचन दर्ज कर दे। पर गुरु अर्जन देव महाराज जी उपर इस चीज दा कोई असर नहीं। सतगुरु गुरु अर्जन देव महाराज अमृतसर दी धरती तो लाहौर गए ने, हजूर जिदन लाहौर जांदे ने सिख विद्वाना ने इस सारी घटना नूं अपने अपने ढंग नाल बयान कीता है। गुरु अर्जन देव जी घरों निकलन तो पहला अपने सत्कार योग महल
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਦਬ ਨਾਲ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਸੋਗ ਨਹੀਂ ਮਨਾਉਣਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਮਰੱਥ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰਤ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਉਣਾ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਗ ਨਹੀਂ ਮਨਾਉਣਾ, ਉਸ ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। ਇਹ ਸਰੀਰਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਬਣਿਆ, ਇੱਕ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਛੜਨਾ। ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰਿਓ, ਸਰੀਰ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਕਦੀ ਟੁੱਟਦੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਔਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਤੁਰੇ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਿੱਤੀ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਪਿੱਛੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਏ, ਪਰਕਰਮਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ।

अर्ज करनी चाहना वा, वैसे अग दे नाल पहला भी कई गुरम कई भगतां दा रबी इश्क वालियां दा वाह पे है, पर जो कुछ गुरु अर्जन देव जी ने कर दिता है शायद एदी मिसाल किते दुनिया विच मिलदी होवे। सतगुरु की बाणी विचो कुछ प्रमाण दे के अर्ज करनी, गुरु अर्जन देव जी तत्ती तवी ते बैठे उबलदी देग विच बैठे, शीश विच गर्म रेता पाया ते सिख विद्वान कहिंदे ने इस तो पहला दो घटनावां होर भी ने, एक ता बड़ी पुरातन है जिदा जिक्र गुरु ग्रंथ साहिब विच भी आउंदा है ते जेड़ी हरहनाक्ष ते प्रहलाद नाल संबंधित है, ते दूसरी घटना कहिंदे ने नमरूद की कचहरी अंदर हजरत इब्राहिम नाल संबंधित है, दोनों रबी इश्क विच भिजे ने, इब्राहिम भी परमेश्वर खुदा दे प्रेम विच भिजे, प्रहलाद भी प्रभु की याद भी जुड़िया है, पर अग इन्हां दोनों के सामने आई है, पर वाहगुरु नू प्रेम करन वाले साबत तां निकल गए ने, पर उन्हां दे जान तो बाद अज तक लोकां दे मन विच एक शंका बैठा रहा, जिस शंके नू गुरु अर्जन देव ने निवृत्त कर दिता है। मैं अर्ज करा हजरत इब्राहिम ने खुदा दा जदों नारा मारिया ते नमरूद ने कई तरह के तशीए दिते ने, मैं गुरु अर्जन देव जी वल आना चाहना सिर्फ दो तीन उदाहरण दे के। शहीदां दा सरताज है गुरु अर्जन देव, कहिंदे ने नमरूद ने इब्राहिम नू कहा सी जे तू खुदा प्रस्त है जे तू हक दा नारा मारना ते आ बलदे होए अंगियार ने मैं तां तेनू समझांगा तू रबी इश्क विच भिजें, जे तू तपते होए अग दे अंगियारियां ते नंगे पैर तुर के दिखा दें ते तवारीखे गल कहिंदी है कि नमरूद ने भकदे हुए अंगियारे जमीन ते विछा दिते ने, अग दियां लपटां उन्हां अंगियारियां विचों निकलदियां ने, ते हजरत इब्राहिम उस खुदा दी टेक लैके कि या खुदा देखी इन्हां अंगियारियां दे उपर मैं साबित रह जावां। जदों उन्हे खुदा दे चरणां विच अर्ज कीती कहिंदे ने तवारीख मुताबक वह अग दे अंगियारे फुल बन गए, ते इस तरह अग दे अंगियारे फुल बन गए कि हजरत इब्राहिम नू तुरदियां बिल्कुल भी मुश्किल ना आई। हजरत इब्राहिम ता साफ निकल गया, अग दे अंगियारियां नू फुल बना के उन्हां नू लंघ गया उपरों, पर ओदे जान तो बाद लोकां ने एक गल शुरू कर दिती, ठीक है इब्राहिम जित के गया है पर जे अग अपना सुभा ना बदलती ते शायद हजरत इब्राहिम डोल जांदा, जे अग दे अंगियारे फुल ना बलदे। मैं अर्ज कर रहा गुरु अर्जन देव ने कोई दुनिया का शंका रहनी नहीं दिता, लोगों ने कहा देखो करामात सी, इब्राहिम ने अग दे अंगियारे फुल बना दिते ताई ता ओ इन्हां उपर बड़े सुखैन तरीके नाल निकल गया, ते जे अग अग रहिंदी ते शायद इब्राहिम डोल जांदा, अग दे अंगियारियां ते ना तुर सकता। इहदा मतलब कि रबी आशक परवान ता हो गया पर ओदे जान तो बाद ओदी करनी ते लोका ने शक कीता कि ए ता अग सुभा बदल गई सी, ते जे अग सुभा ना बदलती उन्हें डोल जाना सी। दूजा बाणी विच प्रमाण हजूर ने दिता है, गुरु अमरदास जी दी बाणी भी है, भगत नामदेव जी दा भी बचन है, प्रहलाद ने भी एक रब दा वाहगुरु दे नाम दा नारा मारे है, ते बाप ने अग एदे सामने भी लियांदी है, खोलका नू आप चिखा विच बिठाया है। एक गल वखरी के खोलका सड़ के राख होगी प्रहलाद बच गया। दूसरी उदाहरण ने थम तपाए ने बाणी विचो प्रमाणे तपते थम ने, ते कह जे तू हरनाक्ष नू नहीं जपना जले हरी थले हरी गौना, ते एक कम कर आ तपते हुए थम नू तू जपी पा लै, वेखांगे तेरा भगवान है। ते गुरु ग्रंथ साहिब कहिंदे ने उस प्रहलाद ने जदों तपते हुए थम नू अपने हथां नाल गवकड़ी पाई, कहन लगे ओ थम बिल्कुल ठंडा सीत हो चुका सी, प्रहलाद भी परवान चढ़ गया, उन्हें भी तपदे थम नू हाथ पाया ते तपदा थन थम बिल्कुल ठंडा सीत हो गया। पर लोकां दे मन विच एक गल फिर बैठ गई कि जे किते भगवान तू थम उत्ते कीड़ी दे रूप विच ना आउंदा ते शायद प्रहलाद डोल जांदा, ते लोकां धारणा भी पड़ियां के कीड़ी ना बन दो रामा प्रहलाद डोल जांदा। साहब ने बाणी विच प्रमाण दिता, कहन लगे

तेरा सिख जान के सेवा की, उन्हें इको गल कही के तू मेरी ना सेवा कर, गुरु अमरदास के घर भी जा सेवा कर। जे किन्ने ने मैं पूछा पिछो बच्चा रोवेगा, उन्हें इना बचन क्या सी भलिए गुरु घर विच बड़िया रहमता नी, तू उथे बैठी भी बच्चे नु चुप कराई जाएगी। केंदी तेरी टोकरी चुकी, पता नहीं तेरी टोकरी ने की कृपा की, मेरे अंदर दे कपाट खुल गए ने। साध संगत यही कारण भाई वीर सिंगोरा ने एक गल बड़े कमाल दी कही, कई बारी मैं अर्ज की है, वह कहने जिन्ना उचियाईया उते बुद्धि खंभ छाड़ ढठी, मलो मली दिल उथे मारदा उड़ारियां, प्याले अन दिस नाल बुल लग जान उथे, प्याला दिसदा नहीं पर रस चखदा पिया सिख, प्याले अन दिस नाल बुल लग जान उथे, रस ते सरूर आवे झूमा आउण प्यारियां। कहिंदे जदों कोई बंदगी वाले दी गल करदा लोग कहिंदे झूठ है, भाई साहब कहिंदे ज्ञानी सानू होड़दा है ते वहमी ढोला आखदा, मारे गए ने ओ जिन्ना लाइया बुद्धों पार तारियां। ए बुद्धि दी गल नहीं, भाई साहब कहिंदे बैठ वे ज्ञानी, बुद्धि मंडले दी कैद विच वलवले ते देश मेरियां लग गईयां यारियां। कहिंदे मैं तां किसे होर देश दी गल करना, यही बचन भाई गुरदास ने अपनी वार नंबर चार विच कीता। कहिंदे गुर सिखी गुर सिख थण, अंदरों सियाणा बाहर भोला, जे बाहरों भुल चुक बोलदे धी खरे हर भाणे, अंदर सियाणा बाहर भोला। कहन लगे फिर ओदा किन्ना कु अंदर टिकया, वह गुरु गुरु शब्द लै पिरम प्याला चुप च बोला, ओ अंदरे अंदर नाम दे प्याले नू छकदा पे। ए रहमता शहद दे दर ते ने, हजूर अज करन जिन अंतर हर हर प्रीत है, ते जन सुगड़ सियाणे राम राजे। गुरु रामदास कहिंदे ने जे तेरे अंदर प्रीत है तू सब तो सियाणा, तू सब तो ज्यादा सोझीवान। ते पुछया महाराज सियाणे ता दुनिया विच बड़े ने, कहिंदे मैं उस सियाणप नू परवान नहीं करदा जे बाहर सियाणा अंदर प्रीत नहीं। शायद यही कारण साहब ने बाणी विच सियाणियां दी गिनती कीती, कहन लगे अत सुंदर कुलीन चतुर मुख ज्ञानी धनवंत, जे प्रीत नहीं काहदा सियाणा, मृतक कही है नानका जय प्रीत नहीं भगवंत। पर इत कहिंदे जिन अंतर हर हर प्रीत है ते जन सुगड़ सियाणे राम राजे। सियाणप नाल नहीं साहब, रोज होका दे के एक बचन कहिंदे ने गुर की मत तू ले आने, भगत बिना बहु डूबे सियाने। साहब कहिंदे ने सहस सियाणपा लख हो है ता एक न चलै नाल, ना तू आवै वस बहुत सियाणप है किसे सियाणप नाल वस आउने। साहब कहिंदे रे जन मन माधो सो लाई है, चतुराई न चतुर बुझ पाई है। ओ सियाणप नाल नहीं, सियाणा ओ वे जेड़ा नाम भी जुड़िया है, सियाणा ओ जिदे हिरदे विच गुरु लई प्रीत है। साहब कहिंदे जे बाहरों भुल चुक बोल दे, जे बाहरों ओ किते शब्द भुल के कुछ होर बोल देंदे ने, मत कही ए माड़ा है। पैन लगे नहीं भी खरे हर भाणे, पर मेरे वाहगुरु नूं भाणे दर ते चंगे लगदे। बाहर दे शब्द देख, बाहर दे जीवन देख के ना भरमी, ओ अंदरे अंदर टिके ने। कहन लगे जे बाहरों भुल चुक बोल दे भी खरे हर भाणे, हर संतां नूं होर थां नहीं, रब दे संतां नूं रब तो बिना कोई थां नहीं। हजूर कहन लगे हर मान निमाणे, उन्हां निमाणियां दा मान तां केवल वाहगुरु है, किसे होर वल नहीं तकदे। एक अदीब ने बड़ी सोहनी गल कही, कहिंदा बाहर दे भेख नूं देख के किते ओदे बस्तर, पर अज आपां तकने आ मैं अर्ज कीती चोला सोहना लिशकना होवे, पग है चंगी गोल गड्डी होवे, ते चिमटियां दी पिछे छणकार पैंदी हो, मैं किसे ते तर्क नहीं कर रहा। असी बाहर दे भेख नूं देख के बड़ी जल्दी असर कबूलने आ, पर साहिब कहिंदे ने नहीं, संत कई वारी मलीन वस्त्रां विच भी मिल सकदे, संत कई वारी पाटे कपड़ियां विच भी मिल सकदे, ते चेते रखी संत कई वारी पेंट कमीज विच भी मिल सकदा। कोई भेख दी पाबंदी नहीं, साहिब ने बाणी विच वचन कीते ने बेअंत ऐसे। हजूर ने सतगुरु ने कृपा कीती, एक विद्वान ने बड़े सोहनी शब्द कहे ने, वो कहिंदा एक वारी कोई मनुख किसे दे घर थल्यों निकले है, गल सिर्फ इस नूं समझाण लई कि संत नूं टेक केवल एक रब दी।

चित्त मरता मरता जग मुआ, कबीर मरता मरता जग मुआ, मर्त ही ना जानिया कोई, ऐसी मरनी जो मरे बहुर ना मरना हो। ऐसी मरनी जो मरे बहुर ना मरना हो।

दास ते दूसरे दा नाम है भाई सती दास ते ए दोनों जेड़े ने भाई पिरादा जी दे खानदान विचों ने ते भाई पिरादा जी ओ गुरु के सिख होए ने जिन्ना ने गुरु अर्जन साहिब जी दे वेले सिक्खी नू कमाया है ते जिन्ना ने शब्द दे रस नू माणे ते भाई पिरादा जी दे जीवन संबंधी भाई गुरदास ने अपनी बाणी विच खास करके जिक्र कीता है। भाई पिरादा दी अंश विचों भाई मतीदास ते भाई सतीदास ने भाई मतीदास गुरु का दीवान है ते भाई सतीदास जेड़े ने गुरु तेग बहादुर जी दे चरणा विच रहिंदे ने ते मैं अर्ज कीती सी गुरु तेग बहादुर जी दे बचना नू भाई साहिब भाई सतीदास जी फारसी विच जेड़े ने एदा उतारा करदे ने ते सत्कार योग भाई साहिब भाई मनी जी सत मनी जिन्हां नू मनी दास उस वक्त कहा जांदा सी मनी राय भी शब्द वरते है भाई सतीदास दे फारसी तो पंजाबी विच तर्जमा गुरमुखी विच तर्जमा भाई साहिब भाई मनी सिंह करदे हुंदे सन। दो सिख भाई मतीदास सतीदास तीसरे सिख ने भाई साहिब भाई दयाला जी चौथे सिख ने भाई गुरदत्ता जी बाबा बुढ़ा जी दी अंश विचों ते पंजवें सिख जेड़े तुरे ने इन्हां दा नाम है भाई उदय जी। पंज सिख अज गुरु तेग बहादुर जी नाल चले ने ते इन्हां सिखां नूं भी पता है कि भाणा वापरना है ते गुरु तेग बहादुर जी दे चरणां दी टेक लै के बड़े प्यार दे नाल सतगुरु दे रंग विच रंगे होए तुर पए। गुरु ग्रंथ साहिब जी दी बाणी ने सूरमे दा जिक्र कीता है। असीं कई वारी सूरमे दी गल करने हां ते केवल इथों तक साडियां नजरां विच सूरमे दी परिभाषा है कि जेड़ा मैदाने जंग अंदर अपने तन दे टुकड़े टुकड़े करा लैंदा है आपां कहिंदे आ केवल इह सूरमा है। पर गुरमुखां ने शब्द पढ़िया गुरु अर्जन साहिब जी दा महाराज कहिंदे ने एक उह सूरमा है जेड़ा बाहर जूझ मरदा है पर गुरु नानक साहिब दे घर अंदर केवल सूरमा नहीं केवल सिपाही नहीं इत्थे इक शब्द पहला वरत्या है संत। गुरु साहिब दे घर अंदर केवल शक्ति नहीं एक शब्द पहला आया भगती। ध्यान रखना भगती ने संत नू जन्म देना है ते उस भगती विचों पैदा हुई शक्ति ने सूरमे नू जन्म देना। सतगुरु ने बाणी विच खास करके जिक्र कीता है किन्ने जाको हर रंग लागो इस युग में सो कई तह सूरा आत्म जिणै सगल वस पाकै जाका सतगुरु पूरा जिन्हें अपने अंदर नू जितया होया है। सतगुरु एहो जिहा सूरमे बारे कहिंदे ने कि जिन मिल मारे पंच सूर वीर सो पूरा है कली रे जिन्हें अपने अंदर नू जितया होया है। ए गुरु के सिख जिहड़े तुरे ने ए आत्मक जेतू भी सूरमे ने अपने अंदर दे विकारां नू भी जितया होया है ते गुरु तेग बहादुर जी जदों तुर लगे ने ते विद्वान सिख कहिंदे ने गुरु गोबिंद राय जी जिन्हां नू आपां शब्द इस करके गोबिंद राय वरते है कि उस वक्त अमृत संचार नहीं होया। एक घटना सन 1675 दी है गुरु तेग बहादुर सच्चे पिता तुर लगे ने ते गुरु गोबिंद राय जी ने पिता दे चरणां विच नमस्कार कीती है ते उस वक्त एक शब्द कहा सी विद्वाना ने उस शब्द नू सांभ के रखे है कहन लगे ऐ पुत्र गोबिंद राय खे बेटा जिदे कोल तेरे वर्गा घर विच पिछे पुत्र होवे ओनू किसे तरह दी चिंता ते झोरा नहीं ओनू किसे तरह दा डर नहीं ते सतगुरु ने कहा सी बेटा झुकना नहीं जुल्म दी हनेरी सामने अड़ खलोना ते गुरु तेग बहादुर जी ने जान लग्या 9 साल दे अपने बच्चे नू कुट के छाती ना लाया। कहना बहुत आसान है याद रखना आपां कुछ दिन घर तो बाहर आउने आ ते मोह दियां तंदां परत परत के खिंच दियां ने परत परत के जकड़ दियां ने ते कदी उस शीर नू ते उस हिरदे ना तको कि जिस बापू ने अज पुत्तर नू कुट के जख्मी विच लिया है परत के पुत्तर नू मिलना भी नहीं ते उस वक्त दे हालात समा किन्ना कु करुणामय होवेगा जदों आनंदपुर दी धरती तो गुरु तेग बहादुर जी तुरे होणगे। सारे सिख कोल ने सतगुरु तुर लगे पुत्र नू घुट छाती ना लाया माता नानकी आए ने
सत्कार योग माता जी

अकाल मूरत अजूनी सै पं गुर प्रसाद जप आद सच जोगाद सच है भी सच नानक हो।

माता कभी पिता कभी भाई मनाएंगे। कहंदा गले लगा के हमको कहेंगे बार बार, कहन लगे मन जाओ लेकिन हम नहीं मानेंगे जिनहार, पर आपा नहीं मनांगे। ते जे असी मन भी जाएंगे फिर अगली वो गल कहंदा है इकरार लेंगे सबसे ना बुलाना फिर कभी। साडे नाल वादा करो पिता जी भ्राता जी कदी तुसी सानू भुलाओगे नहीं। इकरार लेंगे सबसे बुलाना ना फिर कभी, बारे दिगर बिचर के सताना ना फिर कभी, हमको अकेले छोड़ के जाना ना फिर कभी, यूं कह देते हैं हंस के रुलाना ना फिर कभी। वो कहंदा पोतरे गल्लां ते करदे ने ते मां दे जेड़ा गला भर आया अपनियां अखां नूं पूंजदी पई है मां, आखिर वो कोमल हिरदा है। कहन लगे बच्चों की गुफ्तगू जो सुनी दादी जान ने, बे अख्तियार रो दिया उस वाला शान ने, उस उच्ची वडियाई वाली ने केवल अपने अंदर होका भरिया ते घुट के दोनों बच्चियां दे मत्थे चुमे ते अपने नाल छाती दे ला लिया। रात नूं सोहला साहिब जी दा पाठ कीता है, आराम कीता है, ते इसे रात ही गंगू ने अपनी कारामात जो अपनी कारस्तानी वो कर दिती, माता जी दी दौलत वाली खुरजी चुरा चुरा लई। अमृत वेला होया माता जी ने आप इशनान कीता है, नितनेम कीता, बाणी दा पाठ कीता ते दोना पोतरिया नूं उठाया। अज मां अपने नितनेम तो बाद एक एक नूं इशनान कराया, सोने पोशाके पहनाए ने, सीट ते कलगी सजाईए ते अपने कोल बिठा के दोना पोतिया तो नितनेम दी बाणी दा पाठ कराया। आप पाठ सुने इन्हां तो जदो इधर दिन दा चढ़ा होया माता जी ने बस्तर लभदिया लभदिया थले झाती मारी ते देखदे ने रुपया वाली पोटली जड़ी ओ गुम ते आवाज दे के गया पुत्र गंग्या चंगा कीता ही तू दौलत नू सांभ लिया है। हुण ओदा हिरदा सी चोर सुनदिया सारी ओनू अग लग गई, कहिंदा हद हो गई नाले ता अपने घर विच मैं तुहानू रखिया है ते दूसरा मेरे उत्ते इल्जाम लांदे पयो मैं चोर हां। कहन लगा मैं चंगा तुहाडे नाल भला कीता, तुहानू किते गिरफ्तार करा देंदा, तुहानू किते मैं सरहंद दे सूबे कोल पकड़ा देंदा ते पता लगदा कि अज तुहाने नाल बीतदी की, अपने घर थां दित्ती ते मेरे उपर ही दोष। ते माता गुजरी कहंदे ने भलिया समा सदा इको जा नहीं रहिंदा, जे तू पकड़ा भी देंदा ते फिर की होना सी, खोना ओ कुजिए जो कुछ मेरे अकाल पुरख वाहगुरु नूं मंजूर है, खोना ओ कुजिए जो मेरे प्यारे परमेश्वर नूं मंजूर है, पर जे तू किते रखे ने ते चंगा है। कहंदे ने उस बंदे तो जरिया ना गया, उच्ची सारी रौला पान लग पिया, चोर चोर कह के जदों रौला पाया मैं संखेप विच अगे तुरा, अपने पिंड तो ए मुरिंदे मुरुंडे दे संदो कोतवाल दरोगे कह लो, एक दा नाम सी जानी खां एक दा नाम सी मानी खां, दोनां नूं जा के कहिंदा है कि गुरु गोबिंद सिंह दे छोटे साहिबजादे और माता गुजरी जी मेरे घर दे अंदर हुणे हुणे उतरे ने ते मैं चाहुंदा सां हकूमत दे बागी बच के ना रहण ते मैं तुहानूं ओह सू देण आया, चलो मेरे नाल उन्हां दी माता ते उन्हां दे पुत्रां नूं गिरफ्तार कर लो। हुण देखो गुरु ते वी इह समां आया, अज माइयां बीबियां भैणां नूं जेला नहीं, कदी ओह वी समां सी सब तो पहला मां गुजरी है जिन्हें जेल कटी दे, सब तो पहला माता गुजरी है ते वाकई मां तू धन है, इस करके असी तेनू धन कहने हां। तेरा पति शहीद है, मैं एक दिन अर्ज कीती सी तेरे चार पोतरे शहीद ने, तेरी ननान दे पंज पुत्र ने, पंजे दे पंजे पुत्र शहीद ने, तेरा सका भरा शहीद है, इथो तक मां तू आप भी तां शहादत दा जाम पीता है। माता गुजरी जी नूं पकड़वाण वास्ते जानी खां ते मानी खां प्रभात वेले दूसरे दिन पहुंच गए ने। माता गुजरी जी नूं कहिंदे ने असीं तुहानूं गिरफ्तार करन आए हां, ते माता जी ने पुत्रां दे मत्थे चुम्मे ने पोतियां दे, कहन लगे मां ये सानू क्यों पकड़दे ने, ते मां ने असीस दित्ती पुत्रो अरदास करियो अपने दादे दे चरणां विच, आपां हुण अपने उस मुकाम ते चलन लगे हां जिथे साडा आखरी टिकाणा होणा, जिथे साडा वसेबा होणा। जदों मां गुजरी जी निकलन लगे ने ते गंगू कोल खलोता है ते तुरन लग्या जानी खां ते मानी खां कोल ने, ते माता गुजरी जी ने एक गल कह दिती सी, गंगू जिस दौलत दी खातर तू बेईमान होया चेते रखी।

जी की फतेह। परम सम्मान योग जुगो जुग अटल सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर सुबाए मान खोए बैठे गुरमुख प्यारे सतसंगी जनों आप जी वडभागी हो जो अज बुधवार दे विशेष दीवान सजदे ने इस दीवान दी हाजरी भरदे हुए आप जी सतगुरां दे पावन पवित्र इलाही बचना दा कीर्तन सरवण कर रहे सी जिवें कि पिछले समय विच इस स्थान दी मर्यादा मुताबक हर बुधवार गुरु इतिहास दी विचार आप संगतां नूं सरवण कराई जांदी सी। गुरमुख प्यारियां ने अपराला कीता है ओ इतिहास दियां पोथियां प्राप्त करके अज तों फिर उस लड़ी नूं आरंभ कर लगे ने। आप जी जिवें भली प्रकार जाणू इतिहास एक उस जंजीर दी तरह जेड़ा साडे वर्तमान तो लैके सानू बीत चुके समय दे नाल जोड़दा है। भावां के गुरु घर दे अंदर साखियां दी परंपरा साखियां दी प्रथा गुरु अंगद साहिब जी दे वेले तो आरंभ हो गई। सतगुरु गुरु अंगद साहिब जी ने भाई बाले तो सरवण करके भाई पैड़े मोखे तो गुरदेव दियां साखियां अंकित कराईयां। उस तो बाद बाबे पिरथिए दी संतान विचों बाबा मेहरवान ने कुछ गुरु का इतिहास इकत्र कीता। फिर गुरु के सिख बेअंत ऐसे हुए जिन्हां ने गुरु के इतिहास नूं काव्य रूप विच भी लिखिया ते वार्तक रूप दे अंदर भी लिखिया। वख वख गुरु साहिबाना दे जीवन नूं बयान कीता। किसे ने गुरु हरगोबिंद साहिब दे जीवन नूं लिखिया कवि सोयन वर्गियां ने ते उन्हां ने नाम लिख दिता गुरबिलास पातशाह छेवीं।

भवति। परं सम्मान योग शब्द गुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर सुभाई मान खोए बैठे गुरमुख प्यारे सतसंगी जनों, आप जी ने इस संध्या वेले दे दीवान अंदर हजूर दे पावन पवित्र इलाही बचना दा रस पिना कीर्तन सरवन कीता है। आप जी बड़े प्यार दे नाल सतगुरु गुरु रामदास महाराज उन्हां दी उस्तत अंदर उचारण कीते हुए सवैयां विचों पट्टां दे बचन आपने गुरबाणी कीर्तन विच सरवण कीते ने, जिथे आपां रोजाना सतगुरां दे पावन पवित्र इलाही बचना दी विचार गुरु की बाणी दी विचार करने हैं। उथे हर बुधवार गुरदेव जी दे पवित्र इतिहास नूं भी आपां वाच रहे हां। जिवें पिछले बुधवार आपां ने विचार कीती सी कि पट्टी दे इलाके दा चौधरी जिस दे घर अंदर पंज धियां ने, उन्हां विचों एक दा किरदा एक दी भावना नूं परमेश्वर ने इहो जिहा भाग लाया कि जिथे भी कोई महापुरश कोई गुरमुख जन बैठदे ने, इह बच्ची उन्हां दे कोल बैठ के उन्हां दे बचन श्रवण करदी। ते एक दिन धन गुरु नानक साहब जी दे दर तों बख्शे हुए कुछ गुरसिख जड़े एकांत विच बैठ के गुरबाणी दी विचार कर रहे सन कि हर एक नूं रिज़क देण वाला केवल एक परमेश्वर है, हर एक दे भागां विच जो मालक ने लिख दिता है ओ कुछ उस नूं नसीब हो जांदा है। ते इस बच्ची ने गुरदेव दे उस शलोक नूं अपने खिरदे विच दृढ़ कर लिया ते जबान तो कंठ कर लिया कि पुरखां बिरखां तीरथां तटां मेघां खेतां के हर एक नूं रिज़क देण वाला परमेश्वर। जदों बच्ची घर आई है ते एक दिन आपस विच पंजे भैणां बैठियां ने ते चार विचार करदियां ने चार जनियां कि साडा बाप साडा बापू पिता कितना चंगा है, जड़ा पहरन नू बस्त्र देंदा है, खान नू भोजन देंदा है, तन ते पान वास्ते सुंदर गहने लैके देंदा है, ते ए खामोश हो के सब कुछ सुनी जा रही है। पर जदों इनू पुछया गया तू क्यों नहीं बोलदी, ते इस बच्ची ने इको उत्तर दिता सी, नहीं भैणों ए केवल तुहाडे मन दा भुलेखा है कि देण वाला साडा बापू वे साडा पिता है, नहीं किसे दा कोई भाग नहीं दे सकदा लै सकदा, देण वाला केवल एक निरंकार है, मैं तां उहदा दित्ता खानी हां, उहदे दित्ते हुए वस्त्र पानी हां, उस निरंकार दे दित्ते हुए तन ते गहने पाए ने। आपस विच ए लड़ झगड़ के उठ गईआं ते चारां ने जा के दुनी चंद नूं कहा सी कि देख असी तां कह रहीआं बापू तेरा दित्ता खानियां वां, पर उह कह रही है देण वाला कोई होर है। जदों बुलाया गया ते इस बच्ची ने बेबाक हो के कह दिता कि देण वाला बापू केवल एक परमेश्वरी, जिहड़ा पत्थर दे कीड़ियां नूं रिज़क देंदा है, जिहड़ा पाणी विच पैदा होए जीवां नूं रिज़क देंदा है, जिहड़ा धरती ते पैदा होई बनस्पति नूं रिज़क देंदा है,
असलियत पुछें ते जो कुछ तू राज भाग मानना पै ए भी उस करतार दी दित्ती दाते एवें भुलेखे विच पै के तू कह रहा मैं देण वाला कोई किसे नू देण वाला नहीं अपने भाग खांदे ने उस दे मन नू इन्नी हंकार नू चोट वजी कहन लगा जे तू रब दा दिता खानी है जे तू करतार निरंकार दा दिता खानी है ते साड़ी बरादरी विच एक कोड़ी है मैं तेनू ओदे लड़ ला देंगा फिर देखांगा कि वह करतार वह निरंकार तेरे भागा जे होवे तू अपने भागा इतने नरक भोगेंगे। उस बच्ची ने सत बचन करके प्रवान कर ले इथों तक आपने विचार की सी। आओ इस तो अगे इस पवित्र प्रसंग नूं आपां वचने ते सतगुरु गुरु रामदास दे दर दी लईए टेक। कवि संतोख सिंह ने इस प्रसंग नूं गुरु अर्जन देव जी दे वेले नाल संबंधित कीता है, पर जदों इतिहास नूं पड़चोलने आ ते असलीयत इह प्रसंग गुरु रामदास जी दे वेले वापरे। गुरु रामदास सरोवर करीब करीब तैयार करा चुके सन, पूर्ण ताल खटाया भाई गुरदास होरां ने जिक्र कीता, पर खैर जिमें कवि संतोख सिंह ने इस नूं बयान कीता है, अज इस दीवान दे अंदर संत बाबा लाभ सिंह जी कार सेवा वाले उन्हां दी सुपत्नी बीबी हरभजन कौर जिन्हां दी सतवीं बरसी उन्हां दे सपुत्र वल्लों भी इह समागम मनाए जा रहे हैं। सतगुरु कृपा करे इस परिवार नूं अपने दर नाल जोड़ी रखे। आओ प्यारियो इस इतिहासक प्रसंग दी विचार करन तो पहला मनोबिरतियां एकाग्र करो, सुरत गुरदेव दे चरणा अंदर जोड़ो ते बख्शो आशीष। बड़े प्यार अदब दे नाल उचारण करो जी सतनाम श्री वाहे गुरु जी, करो बख्शिश गुरमुखो फिर उचारण करो जी सतनाम श्री वाहे गुरु जी।

0: तेरे भाने नू मैं सत करके मन लवां।
1: सदन सासरे दारद महा पहरन खान ना प्राप्त जहां।
0: कवि जी आखदे ने अज पट्टी दे लोक देख दे पए ने, कोड़ी दे लड़ लगी ए बच्ची जदो गई, सौरे घर दे अंदर ना ता पान नू बस्तर ने, ना खान नू भोजन ने, जो कुछ कुछ कु दिन उथे टिकी, जो कुछ घर विच है सी ओ अपने पति नू बना के दिता है।
1: केतक दिन दुख पहुको सहयो, बहर अंत किर चल मैं चहयो।
0: कुछ दिन इस बच्ची ने दुख भुख नू अपने तन ते सह ले, ते अज ओ जदो पति भी देखदा है ते आखदा रजनीए, पता नहीं मेरे ता नसीब मंदे सन, मेरे भाग ता माड़े ने, मैं ता पता नहीं केड़े कर्मां दा फल पिया भोगना वा, ते घटो घट तू ता मेरे तो गुरेज कर दी, तू मेरे लड़ ना लग दी, शायद तेरा भला हो जांदा। पर अगो उस पति बरता ने उत्तर दिता, नहीं पति, जे एक वरी तेरे लड़ लग गई, उस परमेश्वर ने जे लिखिया सी तेरे लड़ लाना, कौन है दुनिया दी ताकत मैनू रोकण वाली। पर याद रखी मेरे मन विच कदी गलानी नहीं, मेरे मन विच कदी नफरत नहीं, मैनू होर कुछ नहीं सुझदा, केवल एक गुरु की बाणी ते दूसरा मैं तैनू परमेश्वर जान के जितनी वाह लगी मैं तेरी सेवा करांगी।
1: इस पर रही न बहु दुखियारी, पतवर्त धर्म महा दृढ़ धारी।
0: कवि जी आखदे ने कुछ समा ता घर टिकी है, परत के इस बच्ची ने अपने पति नू खारी विच बिठा ले। भाई कान सिंह नाभा ने खारी दा अर्थ कीता ओ टोकरी, जिस विच अपने पति नू बिठा के अपने शीश उत्ते चुक ले। खारी विच बिठा अपने घर नू छड के किसे होर पासे दूसरी थां ते चल पई। नाल कहिंदी ए, गुरु गुरु जपी जा, मैनू यकीन है कि मेरा गुरु नानक सानू जिथे भी रखेगा अपनी रजा दे अंदर खुश रखेगा। इसने अपने घर नू त्यागया, दूसरे थां ते वसेबा कीता है।
1: पत कुश्ती को तर विच खारी, अपरग्राम ते मांग आहारी।
0: कहिंदे ने पति नू सिर ते चुक लिया टोकरी विच पा के, ते दूसरे पिंडां विच पहुंच गई। पिंड तो बाहर अपने पति दी खारी टोकरी रख दिए, ते ए दुनी चंद दी ती पिंड दे विच जा के मंगना शुरू कर दी। कुछ घरां विचों रोटी किते सब्जी भाजी मिल जाए ओनू मंग पिन के ले आउंदी है।
1: पित के पुर ना जाच ना करियो, अपर पुरन ते उधर सो भरियो।
0: ते इस बच्ची ने एक होर भी अपना असूल बना लिया, बाकी पिंडां विचों तां जा के मंगांगी, रोटी मिलेगी ओ पति नू देंगी, पर कहिंदी अपने बापू हंकारी ते पिंड विचों मैं मंगण भी नहीं जाना। भुख्या तां रहना परवान है, पर जिदे मन विच इन्ना हंकार है के देण वाला मैं हां, ओदी नगरी विच तां झोली फैला के किसे घर विचों नहीं मंगना।
1: जाच ते आन आन तीते तो, पत अरे आप खाए ले जे तो।
0: पर सिदक वाली ए नहीं है, जदो किसे पिंड विच मंगण जांदी है ना, ते कहिंदी केवल साडे दो ली प्रशादा दे दियो, लालच नहीं, केवल एक वक्त दा प्रशादा मंगना है, आप भी छकना है, ते पति ओ प्रशादा छक नहीं सकदा, ओदे हाथ जड़े ने ओ कोड़ ने खराब कीते पए ने, हथां ओदियां ते पट्टी बनी है, अपने हथां नाल बुरकियां तोड़नियां ने, अपने पति दे मुंह विच पा ओनू आप पहला प्रशादा छकाना, बच जाना ते उस बीबी ने आप छकना है।
1: महा सुधर्म तारत धर्म, निज पत ते ने तारियो परम।
0: कहिंदे ने ओ महा सुधर्म है अपने धर्म विच दिरड़े, अपने पति तो बिना किसे होर दी टेक नहीं, जे सच पुछो ना गुरमत ने, ते हिंदुस्तान दी जड़ी पुरानी संस्कृति ओदे मुताबक एक पत्नी नू अपने पति तो बिना किसे दी झाक नहीं। गुरमत ने ता दोनां नू बराबर असूल दिते, जे गुरु ग्रंथ साहिब ने कहा टुंडेंदीए सुहाग कौ तौ तन काई कोर, जिन्ना नाउ सुहागनी तिन्ना झाक ना कोर। ते नाल फिर मर्द नू भी संबोधन कीता, कहन लगे का क्या गलायो भूष, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਮੂਰਖ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੰਤ ਹਾਂ ਪਰ ਵੇਲ ਨਾ ਜੋਹੇ ਕੰਤ ਤੂੰ ਜੇ ਤੂੰ ਕੰਤ ਏ ਮਾਲਕ ਏ ਪਤੀ ਏ ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਝਾਕੀ ਨਾ ਇਹ ਬਾਣੀ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਏ ਸਰੀਰ ਦੋ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜੋਤ ਜਿਹੜੀ ਏ ਉਹ ਇੱਕ ਏ ਪਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪਾਣੀ ਛਕਾਉਣਾ ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਸੁਣਾ ਰਹੀ ਹੈ
1: ਸੀਸ ਉਠਾਇਓ ਫਿਰੇ ਸੋ ਜੈ ਕੈ ਜਾਚੈ ਅੰਨ ਭੋਖ ਬਹਿਤ ਤੈ
0: ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੀ ਏ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਦਰਦਮੰਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਭਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਈ ਖੌਕਾ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਾਹ ਰੱਬਾ ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਖੇਡ ਵਰਤਾ ਦਿੱਤੀ ਆ ਉਹ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਅਮੀਰ ਬਾਪੂ ਦੇ ਘਰ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਕਦੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਕਾਈ ਅਨੇਕਾਂ ਨੌਕਰ ਚਾਕਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਕਦੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅੱਜ ਉਹ ਪਤੀ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੀ ਏ ਤੇ ਕੇਵਲ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਗਈ ਨਹੀਂ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ

तू गुरबंदक मेरा सखा सखा, जो हमारी बिद होती मेरे सतगुरा। साबिद तुम हर जानो हो आपे, हम रुड़ते फिरते कोई बात ना पूछता।

नानक होशी थी सच तुमरे गुण क्या कहा मेरे सतगुरा जब गुर बोले तब विषम हुए जा।

जो हमारी बेद होती मेरे सतगुरा साबित तुम्हार जान हो आपे खम रुड़ते फिरते कोई बात ना पूछता।

पंज पुत्र जेड़े ने भुआ दे पुत्र ओ अपने मामे दे शीश दी बल दी चिखा नू देखदे पए सन। मामा कृपाल चंद ओ चिखा नू तकदे पए सन। भाई जैते वर्गा जेड़ा गुरु का बेटा बनिया ओ चिखा नू बलदी होई नू तकदा पिया सी। ते ज्यों ज्यों अग दियां लाटां बाहर निकल ते सहिब गुरु गोबिंद राय दे मन ने एक दृढ़ इरादा कीता सी कि जेड़ी ए जलजल जुलम दी अग ए भट्ठी बलदी पई ए, इस बलदी कोई जुलम दी लाट नू मैं सदा लई बजा देवांगा। अर्ज करनी है पंगाणी ते युद्ध संबंधी, पर सिर्फ अपने तवारीख दे पिछोकड़ जेड़े पन्ने ने उन्हां संबंधी अर्ज करके। खजूर पिता की शहादत तो बाद आनंदपुर साहब टिक गए ते जदो संगतां आउण लगियां ते असाम की धरती का एक राजा सी रतन राय जिहदा जन्म गुरु तेग बहादुर महाराज जी की कृपा नाल होया सी। ते कहिंदे इस दे बापू ने रतन राय के पिता ने गुरु तेग बहादुर जी नूं पुछया कि महाराज जदों मेरे पुत्र का जन्म होवे तेरी बख्शिश की निशानी की। ते भाई वीर सिंह कहिंदे ने एक तां उहदे मत्थे उत्ते केसां दी लिट सी ते दूसरा जदों उहदे मत्थे नूं तकदे तां ते इंज लगदा सी जिवें लिखे होए एक ओंकार की झलक पैंदी होवे। कई वारी उहने दर्पण विच खलोणा ते पुछना मां मेरे मत्थे ते आ शाही का दीए। ते भाई वीर सिंह लिखदे ने मां कहना पुत्र ए शाही नहीं ए गुरु नानक साहिब दे घर दी निशानी आ। उहदा निशानी गुरु नानक दी कृपा नाल तेरी आमद होई। फिर उहदे मन विच इक तीबर तांग पैदा होई पंगाणी दे युद्ध दा कारण की मां कि मैं उस गुरु दे दर्शन करने ने जिहदी कृपा नाल मैं संसार ते आया। ते मां होका भर के कहिंदी सी पुत्तर जिहदी कृपा नाल तुसी दर ते इस संसार ते आए ओह अपना ठीकरा दिल्ली दे बादशाह दे सिर ते भन के प्रभपुर प्याना कर गए ने। उन्हां दे तख्त दे मालक उन्हां दे पुत्तर तेरी उम्र दे गुरु गोबिंद राय के। कहिंदा मां गुरु ते गुरु ही हन, मैनू उस सतगुरु दे दर ते लै जा। जदों रतन राय आसाम तो तुरिया कितों कितों तक बाबे नानक दी सिक्खी फैली सी। इहने एक कीमती हाथी अपने घरों लिया जिस दा नाम प्रसादी हाथी रखिया गया सी। दूसरा इहने चंदन दी चौंकी अपने घरों लई। तीसरा इहने पंज कला शस्त्र लिया। ये तिन्ने चीजां लै के मेरे गुरु गोबिंद राय दे दरबार विच ये आनंदपुर साहिब दी धरती नूं आए। साध संगत जदों ये पहुंचया आनंदपुर साहिब दी धरती ते गुरु गोबिंद राय दे इन्ने दीदार कीते। मैं ये अर्ज सनोजे भी करके आया, सिर्फ इको विशा रखिया सी भी तवारीख दे पन्ने आप नाल सांझे कर सकां। केवल अज दा सबजैक्ट इतिहास विचों ये तिन्ने चीजां लै के गुरु गोबिंद राय दे चरणां विच इन्ने नमस्कार कीती। ते जेड़ा ये हाथी सी इहदा पूरा रंग जेड़ा सी ओह चिट्टा सी। इहदी सुंड तो लै के पूंछ तक सारे तन ते इक काली जी धारी सी। ते सिख विद्वान कहिंदे ने इन्ना सियाणा सी अपनी सुंड विच चौर पकड़ के गुरु गोबिंद सिंह जी दे शीश उत्ते चौर करदा सी। जदों हजूर ने शिकार खेड के आउणा ये हाथी सुंड विच पानी भर के साहिब दे चरणां नूं मल के पानी नाल धोंदा सी। ते धोण तो बाद अपनी सुंड विच कपड़ा पकड़ के साहिब दे चरणां नूं साफ करदा सी। तीसरा काम इहने की करना जदों सतगुरु ने तीर चलाने भावें तीर एक दो चार मील ते जाए हजारां तीरां विचों गुरु गोबिंद सिंह दे तीर नूं पहचान के उत्थों लिया के साहिब दे चरणां विच रख दिंदा सी। इन्ना सिखाया साहिब दी चरणां दी सेवा करदा रहा। जिहड़ा पंज कला शस्त्र सी इहदी कला दबांदे सन गात्रे दी कृपाण बन जांदी सी। शस्त्र इक्को ही सी, कला दबाणी विचों पिस्तौल निकलना, कला दबाणी विचों खंजर बन जाना, छोटी जी गुरज बन जानी। कहण तो मुराद एक शस्त्र विचों कला दबाण नाल बटन दबाण नाल पंज शस्त्र देड़े तनों निकल आउंदे सन। फिर इहने कीमती एक चंदन दी चौंकी भेट कीती। साहिब दे चरणां विच दातां दे के रतन राय वापस चला गया। ते जिस रियासत विच आनंदपुर साहिब वसिया उस रियासत दा नाम सी कहलूर। ते कहलूर दा उस वक्त राजा सी भीम चंद। कहिंदे ने एक वारी ये साहिब दे दरबार विच आया जो पंगाणी दे युद्ध दा मुढ वजदा। सतगुरु दे घर विच आया इस प्रसादी हाथी नूं तकिया, चंदन दी चौंकी तकी, पंज कला शस्त्र तकिया ते गुरु के दरबार दी मैं

विषय काऊं लिंद गरल चुकायो काऊं लख्यो हर अवाची ये संस्कृत का शब्द है अवाची अवाची का अर्थ हुंदा दखन वाला पास किसी ने कह दिता हरीता दखन वाले पास रहिंदा लोक आसूं बना के उस दिशा में जगन्नाथपुरी वल तुर जगन्नाथ के रथ थले अपने शरीर नूं दे के मारन लगे। मेरे साहब ने कहा धर्मीय पूर क्रिया है काऊं मैं पान पूज करो श्री काऊं ने लिंग करा लटकायो काऊं लख्यो हर अवाची दिशा में काऊं पिछा को शीश नवायो को भूतान को पूजत है पश को निरतान को पूजन धायो पर सर्व व्यापक नु नहीं समझिया पूर क्रिया पुर जो सब ही जग श्री भगवान को भेज न पाए। श्री भगवान को भेज नहीं पाया कि मेरे लाल जियो तेरा अंत न जाना तू जल थल मैयल भरपुर लीना ए नहीं समझ पाए कूर क्रिया उन जो सब ही जग श्री भगवान को भेज न पायो। बनारस की धरती से कबीर साहब रहिंदे देखो गुरु ग्रंथ साहब जितनिया की बाणी है ना ये मत समझियो उस वेले दे समाज उस वेले दे पुरोहितां दी खाम चाह मिलाई सवाल ही नहीं पैदा होंदा। रहिंदे ने भगत कबीर जी बनारस ते सारी जिंदगी वह बनारस टिके रहे ते जदों उन्हां दे अंतले दिन आए ना वह बनारस नूं छड्ड के मगहर की धरती ते चले गए। जिहड़ी मगहर की धरती है ये गोरखपुर के नजदीक एक हिस्सा है मगहर का इन्हां ने बनारस छड्डिया मगहर चले गए क्योंकि उसे मनौत सी कि जिहड़ा बंदा बनारस की धरती से अपने प्राण त्यागदा है भावें जितना मर्जी कुकर्मी होवे पापी होवे बनारस मरण वाला मुक्त हो जाता है ते मगहर की धरती सरासी धरती जिहड़ा बंदा उस थां ते अपना शरीर त्यागदा है भावें जितना मर्जी धरती होवे वह गधे की चोट विच पैंदा है अज भी मनौत है। पर गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी ने सर्व व्यापक रब नूं जानण वाले भगत जी ने सारी जिंदगी बनारस रहे ते जदों अंतला समा आया चुप के समान मगहर चले गए। लोगों ने बहुत कुछ किया कबीर साहब ने फिर अपनी बाणी विच शब्द उच्चारण किया कह लगे ज्यों जल छोड़ बाहर भरियो मीना पूर्व जन्म हो तप का हीना बहुत वर्ष तप किया काशी मरण पया मगहर की वासी। सारी जिंदगी बनारस रहा मरते समय मगहर चला गया। इतने फिर भगत जी ने बड़िया गल्लां स्पष्ट कीतियां ने मैं तार कीती क्योंकि शब्द भाई साहब ने पढ़ लिया मैं इस करके बेनती करनी चाहना गुरु के सिखो जे असी समझिए कि गुरुद्वारे की चार दीवारी विच ही केवल गुरु है हां गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश है पर गुरु को बैठ के ये सीख के जाना है कि धरती का कोई कोना ऐसा नहीं जिथे मेरे परमात्मा की अपनी जोत यही कारण कि जो अभी गुरु घर आने उदो शब्द वरतने झूठ ना बोली देख तू गुरुद्वारे खलोता है मैं कहना गुरु नाल मजाक है जे गुरु को बैठा झूठ ना बोली गेट तो बाहर जाके कुबर तोली जा गुरु को बह के कहना देख इतने रब वसदा है। गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी पढ़ने वाले खिमा करो गुरुद्वारा का एक सकूल है जो गुरु ग्रंथ साहिब विच कहा गया है गुरु साहिब का वचन होता है सत संगत सतगुर चट साल है जित हर गुण सिखा कहने गुरु की संगत का एक सकूल है जिदे विच पढ़ाई करके जानी है पढ़ के बाद आपा लोगों नूं ये दसना मैं पढ़ के ही आया ते जे बंदा क्लास विच दो घड़ियां पढ़ ले ते बाहर जाके फिर अनपढ़ा वालिया मूर्खा वालिया गल्लां करे ते कई वारी पिंडां विच शब्द वरदने केड़ा सी उह तैनूं पढ़ाण वाला अक्षर सिखे ने गुरुद्वारे कादे लई आउंदे आ। गुरुद्वारा एक सकूल बनाया सी गुरु ने कि सिख हर रोज आए अपने आत्मक जीवन नूं कमाए इहदे जीवन की सुगंधी बाहर लोगों तक भी पहुंचे इहदे जीवन नूं देख के लोग प्रभावित होण। मैं अपने विषय वल तुरां कबीर साहब ने प्रभाती राग विच बहुत सोहना एक बचन किया है क्योंकि गुरु ग्रंथ साहब सर्व व्यापक रब नूं मानदा है ना कि एक थां ते कोई जगह मुकर्र करके कह दिए रब इत्थे है। बाबे नानक ने इस्लाम के घर विच जाके अरब पहुंच के मक्के खलो के जदों हजूर ने उधर चरण किते ने ते उन्होंने लत मारी ते इको गल कही किहड़ा काफिर है जिहड़ा रब दे घर वाले पासे पैर करके पे ते बाबे नानक ने कहा सजना उधर पैर कर दे जिधर रब दा घर।
ਉਧਰ ਮੇਰੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਕਰ ਜਿੱਥੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਪੈ ਜਾ ਕਿ ਖੁਦਾ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਜਲ ਤਨ ਮਈਅਰ ਭਰਪੂਰ ਲੀਨਾ, ਤੂੰ ਆਪੇ ਸਰਬ ਸਮਾਨ, ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਤੂੰ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਬਚਨ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੰਦਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਮੈਂ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੂਰਤੀ ਹੀ ਭਗਵਾਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਸੀਤ ਵਿੱਚ ਵੜਨਾ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਰੱਬ ਕੇਵਲ ਮਸੀਤ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦੱਖਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਝੁਕਦਾ ਪਿਆ, ਦੂਜਾ ਪੱਛਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਲਿਆ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਕੀ ਮਾਰ, ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਗਵਾਨ ਬੈਠਾ, ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਤੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਨੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਬਚਨ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਇੱਕ ਮਸੀਤ ਬਸਤ ਹੈ, ਅਵਰ ਮੁਲਕ ਕਿਸ ਕੇਰਾ, ਹਿੰਦੂ ਮੂਰਤ ਨਾਮ ਨਿਵਾਸੀ ਦੋਹ ਮੈਂ ਤਤ ਨਹਿਰਾ, ਦੱਖਣ ਦੇਸ਼ ਹਰੀਕਾ ਵਾਸਾ, ਪੱਛਮ ਅੱਲਾਹ ਮੁਕਾਮਾ, ਪਰ ਗੁਰਮਤ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਦਿਲ ਮੈਂ ਖੋਜ, ਦਿਲੈ ਦਿਲ ਖੋਜੋ ਇਹ ਹੀ ਥੌਰ ਮੁਕਾਮਾ। ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਖਾਂ, ਤੇਰਾ ਅਸਲੀ ਟਿਕਾਣਾ ਰੱਬ ਤੇਰਾ ਬਾਹਰ ਰਹੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟਿਕਿਆ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਝਾਤੀ ਮਾਰੇਗਾ, ਬਾਹਰ ਨਜ਼ਰ ਖੋਲ ਕੇ ਤੱਕੇਗਾ, ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਦਿਸੇਗਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਾਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜੋਤ ਹੈ, ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਉਹ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਪਿਆ, ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਾਰਨ? ਇੱਕ ਕੁਕਰਮੀ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਕਰਮੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਾਖਤ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਸੰਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਮਨਮੁਖ ਹੈ। ਕਿ ਮਨਮੁਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਦੀ ਜੋਤ ਨਹੀਂ? ਕਿ ਸਾਖਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜੋਤ ਨਹੀਂ? ਕਿ ਇੱਕ ਚੋਰ, ਇੱਕ ਵਟਪਾਰ, ਡਾਕੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਖਤ ਦੀ ਜੋਤ ਨਹੀਂ? ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋਤ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਚੋਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਧ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਗਿਆ? ਪੰਜ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਕੀ ਅੰਤਰ ਹੈ? ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਆਪਣੀ ਵਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਤੋੜੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਰੱਖੀ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਗਾਂ ਭਾਵੇਂ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਗਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਚਿੱਟਾ ਹੋਵੇ, ਗਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਲਾਲ ਹੋਵੇ, ਗਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਗਾਂ ਸਿੰਗਾਂ ਤੋਂ ਬਣੀ ਬਿਨਾਂ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਗਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਚੋਵਾਂਗੇ, ਰੰਗ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਚਿੱਟੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਰੰਗ ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ ਦੁੱਧ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੀ ਗਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਲਾਲ ਨਹੀਂ, ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਗਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਕਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਗਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀਲਾ ਨਹੀਂ। ਚਮੜੀ ਦੇ ਰੰਗ ਕਾਲੇ, ਪੀਲੇ, ਨੀਲੇ, ਚਿੱਟੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਦੁੱਧ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਚਿੱਟਾ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨ ਵਾਲਿਆ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੱਪੜੇ ਕਾਲੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਚਮੜੀ ਕਾਲੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਵੇਤ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਲਾਲ ਹੈ, ਪਰ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀ ਜੇ ਗਾਵਾਂ ਰੰਗ ਬਿਰੰਗੀਆਂ ਨੇ, ਦੁੱਧ ਚਿੱਟਾ ਹੈ, ਸ਼ਕਲ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਰੰਗ ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਖ ਨਹੀਂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋਤ ਉਹਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਤ ਕਿਉਂ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਧਕ ਕਿਉਂ? ਗੁਰਸਿੱਖੋ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਹੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਵੀ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਜੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਨਾ, ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਨਏ ਕਹਾਉਣ ਦੀ ਦੇਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਝਾੜ ਲੱਗ ਪੈਣਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਪਏ ਧਰਮ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਦਿਨ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਧਰਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਿਹਰ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹ ਕਹਿ ਕੇ ਫਿਰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਤੁਰਨਾ। ਸਰੋਵਰ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦਾ ਭਰਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਨੇ, ਉਸ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਦੀ ਸੁਗੰਧੀ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਭਵਰੇ ਨੇ, ਪਰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ ਉਸ ਫੁੱਲ ਦੇ ਕੋਲ ਨਿਰਮਲ ਪਾਣੀ ਵੀ ਹੈ, ਉਸ ਫੁੱਲ ਦੇ ਕੋਲ ਚਿੱਕੜ ਵੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਸਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਲੋਕ ਧਰਮ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿਵੇਂ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਬਿਮਲ ਮਜਾਰ ਬਸਸ ਨਿਰਮਲ ਜਲ, ਪਦਮਨ ਜਾਵਲ ਰੇ, ਪਦਮਨ ਜਾਵਲ ਜਲ ਰਸ ਸੰਗਤ ਸੰਗ ਦੋਖ ਨਹੀਂ ਰੇ। ਦਾਦੁਰ
तू कदे न जान सरे पक सबाल बस निर्मल जल अमृत ना लख सरे। ये मैं अर्थ अर्ज कर देना बेमल मजहार किन पानी बिल्कुल मैल तो रहता है। बम बेमल मजहार बस निर्मल जल पदमल जावल रे पदमल का अखरी अर्थ हूं कमल का फुल जाले का अर्थ हूं जावल का अर्थ है जाना। बाबा नानक जी कहने दुनिया के लोगो केड़े पासे तुरते पयो ए गति नहीं कहने एक सरोवर का पानी निर्मल है उस निर्मल पानी के जाला खलोता है उस निर्मल पानी के कमल का फुल खलोता है उस निर्मल पानी के कमल दिया फुल दिया जड़ा डड्डू बैठा है उस कमल फुल शिखर से चूसन वास्ते घबरा आ रहा। गुरु तो निर्मल सरोवर है खिमा करो कई सज्जन इतों कमल वर्गे खेड़े लैके जाएंगे कई मेरे वर्गे केवल जाला बन के बैठे रहे ऐसे होंगे जेड़े भवरे बन के आएंगे शब्द का रस चूस के चले जाएंगे तो कितनी बदकिस्मती होगी कई एरिया जड़ा बैठे हुए केवल चिकड़ खाए जाएंगे। बिमल मजहार बस निर्मल जल पदमल जावल रे कह लगे पदमल जावल जर संगत संग दोख नहीं रे कमल का फुल पानी विच रहिंदा है जाले विच रहिंदा है चिक्कड़ विच रहिंदा है पर किसे भी परवाह नहीं करता चिक्कड़ विच रहने के बावजूद भी सिरा उच्चा करके ले जांदा है कहिंदा छड्डो परां मैं चिक्कड़ वल ध्यान नहीं देना मेरा संबंध सूरज नाल है इस चिक्कड़ विच ते कदी खेड़ा नहीं आना सूरज दीआं किरणां पैण दी देर मैं करोड़ां को दूर उहदी खिच नाल खेड़ जाना। प्यारियो इक कमल का फुल पानी तो चिक्कड़ तो जाले तो नरेद ते जे गुरु कोल आके भी मेरिया मना तेरे कई साल भटक के भी तेरे अंदर का जाला नहीं लथा केड़ी थां ते जाके अंदर दी मैल धोवेगा। बाबा जी ने दूसरा प्रमाण दिता कहन लगे दान जा मज है उन्हों असी चोने पिंडा थावां ते जेड़े जिमीदारा करदे आए सज्जन उन्हां नूं पता है तुसी कदी देखो गां दा मझ दा दुध जो है गुरु ग्रंथ साहिब ने दुध नूं अमृत कहा है पशु मिले चमियाईयां खड़ खावै अमृत दे हुण ओ दुध दा भरिया होया पशु उस गां दा दुध चोया ते अमृत वर्गा दुध लोकां ने पीता किन्नी बदकिस्मती और चिचड़ दी होवेगी जिहड़ा सारा दिन उस थां दे नाल लगा रहा पर दुध पीण दी थां ते केवल खून पीता रहा। हुण एक बछड़ा है ओ सवेरे शाम गां कोल आउंदा है ओ अमृत वर्गा दुध चुंग के चला गया ते चिचड़ सारी जिंदगी उसके कोल रहा पर दोखे चीज का चिचड़ नूं पता ही ना लगा कि जिथे मैं खून पीना पे इथे अमृत भी है। गुरमुखो खिमा करो जेड़े असी चिचड़ की तरह चोखे नेड़े ढुक ढुक बहने हैं ना मैं बड़ा वड्डा सर्दी हाँ चेते रखो प्यारे नेड़े रह रहे ते औगणा का खून पीने पया कोई रसिया आंदा सवेरे शामी नेत्र बंद करके कोई आसा की वार सुनता कोई कथा सुनता है कीर्तन सुनता है ओ अमृत वर्गा दुध पी के जांदा है पर किन्ना खेद बाबा जी कहन लगे चिचड़ बन के खून ना पी जा चिचड़ रहिंदा नेड़े है। दूसरी बेनती कमल की जड़ विच डड्डू है पर डड्डू किन्ना बदकिस्मत ओनू समझ नहीं जिन्हां जड़ां विच मैं बैठा इहदे कोल भवरा हुंदा है ते भवरा दिन विच कदी कदाई आउंदा है कदी इक दिन आया उहने रस लिया चला गया हमेशा कोल रहण वाला डड्डू चिक्कड़ खाई गया सवरा आके सुगंधी लै गया बाबे नानक दे सिखा तू डड्डू की बिरती तो उपर उठ रब तेन समत बख्शे तू भवरा बन के नाम का रस चख ले। मैं तेरी बेनती कर लगा सारिया जोध है एक संत क्यों दूजा चोर क्यों एक साकत क्यों दूसरा साध क्यों। भाई गुरदास ने बहुत सोहनी एक उदाहरण दिती जदों मीह पैंदा है ते नक्षत्रां विचों सुवंती बूंद दिखदी ते इस गल आपां चेते रखिए हर बूंद सुवंती बूंद नहीं हुंदी सुवंती बूंद दिखण दा कोई वक्त मुकर्र है हर बूंद सुवंती बूंद नहीं पर देखो ओही बूंद धरती ते डिगी पानी ते डिगी ते समुंदर दे पानी विच डिगदिआं सार ओह पानी दा रूप हो गई है एक बूंद ही जदों अरशां तों डिगी पानी विच डिगदिआं सार पानी दा रूप हो गई ते जदो ओही पानी की बूंद सिप्पी का मूह खुला सी सिप्पी विच डिगी ते कुछ दिनों तो बाद मोती बन गई ओही बूंद केले दे विच डिगी ते मुश खपूर बन गई ओही बूंद वाही हुई जमीन ते डिगी ते जिस खेत विच न
नक्षत्र स्वांति बूंदा डिग पे उस खेत की फसल बड़ी चंगी निकलती है। जिस फल वाले रुख उत्ते बूंद डिग पे चेते रखियो उस फल का रस दूजे फलों नाल वखरा हो गया। एक बूंद है वही बूंद पानी विच डिगी पानी बन गई, वह बूंद सिप्पी विच डिगी कीमती मोती बन गई, वह बूंद केले विच डिगी ते कपूर बन गई, वह बूंद जमीन ते डिगी ते फलां वाले रुख पैदा हो गए। किन्नी बदकिस्मती वह बूंद सप्प का मूंह खुला सी उहदे विच डिगी डिगदियां साफ जहर बन गई है। बूंद देखी सामने जोत जोत है सोए, चोर क्यों में साध क्यों में डाकू क्यों में ते संत क्यों में। प्यारे जिदन आए सा निर्मल बूंद सी उदन कोई वैर नहीं सी, उदन कोई दवैश नहीं सी। मैं कई बार बेनती करना हूं जदों इंसान का बच्चा जन्म लेंदा है ना, साडे लोग देखो ओदे कन्ना विच पहली आवाज मैं दी पैंदी है, ओ रोंदा है। ते मैं पिछले दिन भी अर्ज की गुरमत ने कुछ वखरियां गल्लां कीतियां ने संसार दी खेल तो। किसे पढ़े लिखे डॉक्टर नूं पुछो कि बच्चा जन्म लेंदा सर क्यों रोंदा है, ते असीं कहिंदे आ इस करके जन्म का दुख है। ते वैसे मैंने गुरमुखा किसे कहा नहीं सी अज कोई दिन भी है शायद गोरियां दा मदर डे। मैं कहना चलो चंगी गल है, सानू गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी विच समझ पै जाए मां की चीज होंदी है। गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी विच है देखो वो बच्चे का जन्म होया है। इहनू इह ना समझियो मैं छिवियां दीआं गल्लां करन लगदे हां। मां बिलकदी है जन्म दिंदिया, उस तो पीड़ा बर्दाश्त नहीं होंदी, मरण तक जाती है। पर जदों उस बच्चे का जन्म होंदा है ते डॉक्टर उस बच्चे नूं उसे वेले लपेट के मां दे सीने लांदे ने, पता नहीं की ममता उहदे अंदर पई है। बिलकदी कुरलांदी बच्चे नूं जन्म दिंदिया बच्चा सीने नाल लगन दी देर है ते कुदम हसन लग पैंदी, उहदियां अक्खां विच खुशी दे अश्रू अथरू आ जांदे। जदों बच्चा रोंदा है असीं आम तौर ते कहिंदे हां कि बच्चा इस करके रोंदा है कि इहनूं जन्म का दुख है। पर गुरमत कहिंदी बच्चा इस करके नहीं रोंदा जन्म का दुख है, इस करके रोंदा है कि भावें माता दे उदर दी अग सी पर तेरी याद ने मैनूं तत्ती वाह ना लगन दित्ती। अज जिहड़ी वकारां दी खनेरी चल रही है अज दा विछड़िया पता नूं किन्ने कु जन्म लग जाए। रोंदा इस करके लिव टुट गई। गुरु अमरदास जी ने कहा लिव छुड़की लगी तृष्णा माया अमर वरताया। भाई गुरदास किन ने रोवै रतन गवाए का माया मोह गुबारा, ओ रोवै दुख अपना हासस गावै सब प्रवाह। मैं दो मिनट जां चार मिनट विचों निकल के अज दे दिन संबंधी जरूर अर्ज कर देना। पिछले दिन मैं एक बेनती की सी प्यारियो मेरे नौजवान वीर भी बैठे होणगे भैणां बैठिया ने, जिंदगी विच असीं कहिंदे आ मनुखा जन्म एक बार मिलिया है परत परत के नहीं मिलना। दुनिया का हर रिश्ता बनाया जाता है, स्त्री की मौत होंदी है। बाबा जी ने कहा भंड मुवा भंड पा दी है, मौत तो बाद दूसरा कार्य रचान तुरदा है। पुत्र जवाब दे जाते हैं ते कई बार दूजे लोगों तो वह प्यार पैदा करने का यत्न करता है, आम लवारसा नूं पुत्र बनाना शुरू कर देता है। दुनिया के रिश्ते स्त्री तो बाद स्त्री मिल सकती है, पुत्र के बाद कोई होर पुत्र बन सकता है। मित्र एक छड़े दस मित्र मिलेंगे, पर यह गल कभी ना भुलियो मनुखा जन्म भी एक बार मिलिया है ते मापिया का प्यार भी केवल एक बार मिलता। मां का प्यार कितों नहीं मिलता, बाप का प्यार कितों नहीं मिलता। यह रिश्ता ना खरीदया जाता है ना बनाया जाता है ना इनू कोई खो सकता है, मां प्यार केवल एक बार है। ते एक मैं बेनती होर की सी कि असी एक गल नूं समझिए, इहनूं मोह दीआं तंदां ना समझियो। एक सज्जन ने बड़े सोहणे शब्द कहे सन, मैं फिर अज दोहरा दिया, हर बंदे की जबान ते शब्द मां क्यों ने। एक बंदा सौ साल की उम्र भोगदा पे ते उहनूं जदों कितें तकलीफ आउंदी है ते कहिंदा हाए मां। एक नौजवान जिहड़ा है उहनूं पीड़ा आउंदी है कहिंदा हाए मां। क्यों दी जबान ते मां मां कूकदा, मरते दम तक आवाजा मारी जांदा मां। हालांकि मां नूं गया होया कई साल हो चुके हैं। प्यारियो वो मां तां कहिंदा है क्योंकि वो निक्के जे सैल ने मां दे सांह